एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 11 सितंबर वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6 बजे हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभुगो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के

0: सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए चिंतन। विषय है स्वाध्याय।

सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। हम कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो जाएं, कुछ न कुछ सीखने समझने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। निरक्षर लोग भी ज्ञानी बन सकते हैं, बशर्ते वे निरंतर सीखने का अभ्यास करें। हम जब छोटे होते हैं अक्षर भी ठीक से नहीं लिख पाते, तब निरंतर अभ्यास करवाए जाने

के कारण हम अक्षरों को लिखना सीखते हैं, उसके बाद लिखे हुए वाक्यों को पढ़ना सीखते हैं। धीरे धीरे हम समृद्ध होते चले जाते हैं। जो लोग सीखने की दुनिया से दूर रहते हैं वे जीवन भर निरक्षर बने रहते हैं। हमें सीखने से ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। गुरु हमसे बड़ा हो ये जरूरी नहीं, हमसे गुरु छोटा भी हो सकता है। जो हमें बेहतर गुरु सिखाए वह हमारा गुरु, फिर चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बस सीखने की ललक होनी चाहिए। हमारे माता पिता ने बचपन से ही सीखते रहने के जो संस्कार दिए वे अब तक हमारे काम आ रहे हैं। माता पिता के संस्कारों के कारण ही आज भी हम सीखने में परहेज नहीं करते, समय समय पर तकनीकी जानकारी हासिल करते रहते हैं। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस सुप्रभात वेला में संकल्प करें कि हम नित्य कुछ नया सीखेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का, ये आमिर चैनल है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वंदना।

वंदना सुन रहे हैं आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: इस देशभक्ति गीत के साथ ही वंदना कार्यक्रम
1: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

आज के कार्यक्रमों में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता खेती में वाद, 6:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत, प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन।

प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10 बजे और पुनः 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रातः 9:00। 9:10 पर और पुनः 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा प्रातः 9:30। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक, 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम जिले की चिट्ठी को आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। वहीं 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल 7:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषीय बॉल बाय बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े श्रोता सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लाइव स्ट्रीमिंग एवं स्थानीय FM ट्रांसमीटर से जुड़े श्रोता सुनेंगे समाचार संध्या। वहीं रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दुबई में खेले जाने वाले एशिया कप का सीधा प्रसारण।

अभी आप सुन रहे थे दिनभर के कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम खेती।

0: हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में बच्चों का एकाकीपन, इस विषय पर वार्ता अपूर्वा जैन से।
1: एकल परिवारों और छुट्टी संयुक्त परिवारों की परंपरा ने बहुत सी असुरक्षाओं को जन्म दिया है। इनमें से एक है बच्चों में अकेलापन। कामकाजी माता पिता के सामने विकट समस्या है बच्चों की परवरिश की। आया या नौकरियों के सहारे घर के रोजमर्रा के काम तो किसी तरह से निपट जाते हैं, लेकिन बच्चों की मानसिकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने का समय भी मॉडर्न पेरेंट्स के पास नहीं है। कई बार जाने अनजाने में बच्चों के प्रति यही अनदेखापन बहुत महंगा पड़ जाता है। अकेलेपन के शिकार बच्चे अपने वातावरण में बंद रहते हैं। घर का एकांत उन्हें पसंद होता है और सुरक्षित भी लगता है। वे ज्यादातर बाहर जाना पसंद नहीं करते और किसी का आना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। जल्दी किसी से हाय या हेलो भी उन्हें पसंद नहीं होता। कई बार वे चुपचाप अकेले में बैठने को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कक्षा और स्कूल के दोस्तों के साथ जाने से भी वे बचते हैं। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। आम तौर पर दूसरे बच्चों की प्रशंसा अकेलेपन के शिकार बच्चों में जलन की भावना पैदा कर देती है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से दूर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं और इसी कारण बच्चा अकेलेपन का एहसास करने लगता है। कई बार थायराइड, मोटापा, कमजोरी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के कारण बच्चा आम बच्चों के साथ मिलकर

नहीं रहता। कुछ बच्चे अपने आप को दूसरे से अलग महसूस करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा बार बार जगह बदलना, चाहे वह स्कूल हो, घर हो या पेरेंट्स की नौकरी के बदलाव के कारण बच्चा अपने सामाजिक संबंध को ठीक से स्थापित नहीं कर पाता। इसलिए इस तरह के लगातार बदलाव से वह अकेलेपन को पसंद करने लगता है। कटु सत्य है कि परिवारों में बुजुर्गों की भूमिका खत्म सी हो गई है। छोटे परिवारों के बाद बने कामकाजी एकल परिवारों में माँ बाप भी अब बच्चों के बचपन से गायब हो रहे हैं। ऐसे अकेले वातावरण में बच्चे अपने मनोरंजन की चीजों के चयन के लिए स्वतंत्र हो गए। इंटरनेट की दुनिया ने बच्चों और किशोरों के मनोमस्तिष्क को आक्रामक बना दिया है। इस संदर्भ को प्रमाणित करती तमाम घटनाएं देखने सुनने को मिलती रहती हैं। मोबाइल, इंटरनेट आदि की लत के शिकार बच्चे दहला देने वाले अपराध कर बैठते हैं। इंटरनेट के माध्यम से उभरती इस समस्या का समाधान खोजने की अत्यंत आवश्यकता है। बच्चों को समाजीकरण में अपनी खास भूमिका निभाने वाली स्कूल और परिवार तथा अन्य प्राथमिक संस्थाओं की जिम्मेदारी कहीं न कहीं सिमट दी जा रही है। इसका प्रभाव यह हुआ कि बच्चे अपनी दुनिया अलग बनाते जा रहे हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि परिवार के बिखराव से बच्चों का बचपन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दादा दादी, नाना नानी की देखरेख में पलने वाला बचपन अब कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी और वीडियो गेम जैसे संचार माध्यमों के बीच पल रहा है। बच्चों के जीवन में उनके एकाकीपन, तनाव और निराशा को कम करने का अच्छा तरीका है कि उनको रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए, उन्हें खेल संबंधी व अन्य सृजनात्मक गतिविधियों में व्यस्त किया जाए। कितना प्यारा होता है बचपन, कितना प्यारा होता है बचपन, जिसमें खिला रहता हमेशा मन, खेल कूद में बीत जाता सारा दिन, खेल कूद में बीत जाता सारा दिन और रातें कट जाती तारे गिन गिन। अकेलेपन से तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता है। बच्चे का आत्मविश्वास कम होने लगता है और नकारात्मकता बढ़ती है। बच्चों में अकेलेपन की वजह पहचानने और समय रहते ही उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे के बदलते व्यवहार का ध्यान से अन्वेषण करें। स्कूल जाकर कक्षा शिक्षक और परामर्शदाता से मिलें और खुलकर बात करें। एक नई रुचि विकसित करने का प्रयास करें, जैसे कि खेल, संगीत, नृत्य या कला, जिसमें बच्चे का रुझान हो। पसंदीदा जगहों पर नए लोगों से मिलने का अवसर दें। प्ले डेट पर कुछ प्रिय दोस्तों के साथ आयोजन करें ताकि बच्चा सामाजिक हो सके। माता पिता को अधिक से अधिक समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। उनसे बातें, हंसी मजाक एवं दोस्ताना संबंध बनाना चाहिए। किताबों को उसके साथ दोस्त बनाएं, क्योंकि किताबें बेहतर दोस्तों के बराबर होती हैं। अगर आपको लगता है कि कोई उपाय काम नहीं कर रहा है तो साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेने में देरी ना करें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपको इस समस्या से निकलने में मदद कर सकते हैं। साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया भी अकेलेपन को बढ़ावा देती है, इसलिए अपने बच्चे को नेटवर्किंग साइटों से दूर रखने का प्रयास करें। बच्चे पर उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उसके भविष्य की भी जिम्मेदारी है, इसलिए उसे सुधारने में कोई कसर ना छोड़ें। वो बचपन था जब शामें भी हुआ करती थी, वो बचपन था जब शामें भी हुआ करती थी, अब तो सुबह के बाद सीधे रात ही होती है। सोशल मीडिया भी इंटरनेट से जुड़ी ऑनलाइन धाराओं को पूरी तरह से काबू करने पर उतारू है। बच्चे इंटरनेट दुनिया के बड़े उपभोक्ता बन चुके हैं। घर परिवार में बच्चों की सुनवाई ठीक से न होने के कारण आभासी दुनिया उन्हें अपना दोस्त बनाने को आतुर है। यही वजह

हैं कि अबोध बच्चे आभासी दुनिया के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। देखने में यह भी आ रहा है कि परिवारों में बच्चों को भौतिकवादी सुविधाएं देकर माँ बाप अपनी सामाजिक भूमिका की इतिश्री समझ रहे हैं। बच्चे घर की चार दीवारी में बंद होकर आभासी दुनिया में चले जाते हैं, इंटरनेट पर हिंसक खेल खेलते हैं। खेल में जीतने के लिए उन्हें कंप्यूटर, वीडियो या मोबाइल के पर्दे पर किसी चरित्र के मारने में बहुत मजा आने लगता है। परिणाम यह होता है कि इन कृत्रिम चरित्रों को मार मार कर पलते और बड़े होते ये बच्चे अपनी वास्तविक जीवन में भी ऐसा करने से नहीं चुकते। संयम, सहनशीलता, दया, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्य अपना महत्व लगातार खोते जा रहे हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति में विलंब बच्चों से असहनीय हो रहा है। परिवारों में बच्चों की खुद की अस्मिता अन्य परिवारजनों से अलग होने की मांग कर रही है। यही वजह है कि परिवार में टोका टोकी तथा बच्चों में बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बच्चों को हिंसा की गिरफ्त से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम बच्चों के प्रति तटस्थता के भावों का अविलंब त्याग करते हुए उनके नजदीक आने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि बच्चों के जीवन का एकाकीपन उन्हें उत्तेजना के तरह तरह के भावों के प्रकटीकरण के लिए उकसाता है। एक बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा हो सकता है जहां बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर भी अगर उसे अपनी माँ से वह प्यार और ध्यान नहीं मिल पाता जिसकी उसे जरूरत है, तो वह अकेला महसूस करता है। अभिभावकों को बच्चों एवं बच्चों के दोस्तों से भी संपर्क रखना चाहिए, जिससे बच्चों की गतिविधियों पर वे ध्यान दे सके। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें बनाना हम बड़ों पर निर्भर होता है, क्योंकि बच्चों के भविष्य पर ही देश का भविष्य टिका होता है। टूटे हुए इंसान को जोड़ने से आसान किसी सशक्त बच्चे का निर्माण करना है।

आप सुन रहे थे अपूर्वा जैन से वार्ता, वर्तमान परिदृश्य में बच्चों का एकाकीपन। इसी के साथ ही कार्यक्रम वार्ताएं यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं धर्मा फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। वर्मा मलिक ने इस गीत को रचा है, सुरों में ढाला है सोनिक ओमी ने।

0: दूं।
1: कमर के देख झटके,
0: इधर भी देख पलट के,
1: तू मुझको ना पहचाने,
0: मुझे तू भी न जाने।
1: बदन मेरा है कुंदन,
0: मेरा दिल भी है चंदन।
1: मैं चंदन
0: हूँ, बहू हूँ। इशारों को अगर

आइए अब आपको सुनवाते हैं मदहोश इस फिल्म का गीत। आशा भोसले और किशोर कुमार ने इसे गाया है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शरीफ बदमाश इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना और राहुल देव बर्मन का संगीत था। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। टैक्सी ड्राइवर इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफी के आवाजों में। फारूक कैसर ने इसे लिखा है और ओपी नैयर का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गुलशन बावरा ने इस गीत को रचा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में सुनिए आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम जुगनू।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा,

0: मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जो भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। यह सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इन्क्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन

0: बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष सुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
6: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनकी आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों

0: कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है, ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है, बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट June 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ देशों को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है, जब भावनाएं शब्दों में ना समा सकें तो वो संगीत बन जाती हैं, और जब संगीत भी कम पड़ जाए तो वो नृत्य बन जाता है।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं नृत्य के बारे में, उन अतिरिक्ते कदमों की, उन भाव भंगिमाओं की जो बिना कुछ कहे दिल का हाल बयां कर देती हैं। तो सुनिए पुनः से, क्योंकि आज घुंघरू की छन छन सीधे आपके दिल तक पहुंचेगी।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ दिल से। श्रोताओं, जब हम भारतीय नृत्य की बात करते हैं तो हमारा इतिहास हजारों साल पीछे चला जाता है। हमारे यहां नृत्य सिर्फ एक कला नहीं बल्कि साधना है, ईश्वर से जुड़ने का एक जरिया है। भगवान शिव का नटराज रूप इस बात का प्रमाण है कि यह ब्रह्मांड भी एक दिव्य नृत्य की लय पर ही चल रहा है। शास्त्रों की माने तो महर्षि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। उन्होंने नृत्य को दो प्रमुख भागों में बांटा, पहला तांडव जो कि ऊर्जा, साहस और भगवान शिव के पौरुष का प्रतीक है, और दूसरा लास्य जो सौंदर्य, लालित्य और माता पार्वती के कोमल भावों को दर्शाता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज हमारे देश में 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी, असम का सत्रिया, मणिपुर का मणिपुरी और उत्तर भारत की शान कथक। कथक का अर्थ है कथा कहना, जो कथा कहे सो कथक कहलाए। पुराने समय में मंदिर के आंगन से शुरू हुआ यह सफर मुगल दरबारों से होता हुआ आज दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंच चुका है। लेकिन यह भी जानिए श्रोताओं कि भारत की नब्ज सिर्फ शास्त्रीय नृत्यों में ही नहीं धड़कती, बल्कि हमारे देश के कोने कोने में बसे लोक नृत्य भी इस मिट्टी की असली महक है। फिर चाहे वह पंजाब का भांगड़ा या गिद्दा हो या गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर हो या महाराष्ट्र की लावणी, जब ढोल पर पहली थाप पड़ती है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। यही तो जादू है हमारी संस्कृति का।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आज के इस आधुनिक दौर में हमारे युवाओं ने नृत्य को एक नया आयाम दिया है। श्रोता, फ्यूजन, हिप हॉप और कंटेम्प्रेरी स्टाइल के बीच भी हमारी शास्त्रीय जड़ों की चमक फीकी नहीं पड़ी है। आज के युवा भरतनाट्यम और कथक को वेस्टर्न बीट्स के साथ मिलाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है दोस्तों, यह आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे बेहतरीन तरीका भी है। जब आप नाचते हैं तो तनाव दूर भाग जाता है और हमारा मन आनंदित हो जाता है।

दोस्तों, शास्त्र नृत्य जहां व्याकरण और नियमों से बंधा होता है, वहीं लोक नृत्य बिल्कुल आजाद पक्षी की तरह है। यहां न कोई कड़ा नियम, न कोई गलती, बस एक ढोल चाहिए, एक साथी और दिल में थोड़ी सी खुशी। आजकल हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी जड़ों से थोड़े दूर होते जा रहे हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो किसी

श्रोताओं, जिंदगी जब भी आपको रोने का मौका दे, आप ढोल की थाप पर थिरकना चुनिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। इसी नगमे के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय में चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं सुप्रिया और श्रद्धा के गाए कुछ राजस्थानी गीत। पहला गीत सुनने से पूर्व आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: सुप्रिया और श्रद्धा की आवाज में सुनते हैं पहला गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत पे अगला गीत आपको सुना रहे हैं सागर सेन, श्रद्धा और सुप्रिया की आवाज में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मही चैनल है। प्रातः के 9 बजे हैं। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 147 निकायों में मतदान जारी। 18वीं ब्रिक्स समिट कल से नई दिल्ली में। सम्मेलन से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए और राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान 6 नगर निगम सहित 147 निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और पाली नगर निगम शामिल हैं। इस चरण में 4,474 वार्डो के लिए 9,758 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। 87,60,000 से अधिक मतदाता, 18,200 से ज्यादा उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 54,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि वहां चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है। दिव्यांग से लेकर बुजुर्ग मतदाता सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केन्द्रों पर पहुंच रहे हैं।
1: शहर के विभिन्न पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का आना लगातार जारी है। कहीं मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी है तो कहीं इलाकों में सुबह से ही

0: लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी अपने अपने बूथों पर पहुंचकर वोट डाला और नागरिकों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा।
1: पाली नगर निगम के लिए भी आज चुनाव हो रहा है। चुनावी माहौल का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाली संवाददाता।
2: दूसरे चरण में पाली, बाली, खुड़ाला, फालना, सादड़ी, तखतगढ़ और सुमेरपुर में मतदान किया जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में युवा, महिला, पुरुषों सहित हर वर्ग में उत्साह नजर आ रहा है। प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई है। बूथों पर कहीं प्रवासी तो कहीं मॉर्निंग वॉक कर मतदाता मतदान कर रहे हैं। नगर निगम पाली के 65 वार्डो में 167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने और निष्पक्ष रूप से अपने शहर की सरकार के चयन में भागीदारी निभाने की अपील की।
3: सारे जिलों में जो भी नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं वहां पर शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान का उपयोग करें। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा मतदान स्थल पर और मतदान स्थल के बाहर भी जो है पुलिस प्रबंध किया गया है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो वोटर हेल्प डेस्क पर भी जो है आपकी मदद के लिए सन्नद्ध हैं। तो मेरा यही आपसे अपील है कि अपने मताधिकार के इस राष्ट्रीय कर्तव्य का जो है निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।
1: राज्य के 309 नगर निकायों में मतदान के बाद वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। वहीं अध्यक्ष पद का चुनाव 21 सितंबर को किया जाएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत मंडपम में होने वाले दो दिन के इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। यात्रा के दौरान श्री पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस बीच आज नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आयोजित किया जा रहा है। एक दिन के इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापारी मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सावधानी और सतर्कता ही पशुओं में लंपी रोग के बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने ये बात जयपुर में लंपी स्किन डिजीज की स्थिति और नियंत्रण उपायों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में रोग के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और अब तक 87% से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य में लंपी रोग से 10,403 पशु संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 6,905 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को टीकाकरण तेज करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संक्रमित पशुओं को अलग रखने के निर्देश दिए। इधर सवाईमाधोपुर में आज पशुओं में बांझपन की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिले के 4 ब्लॉक्स में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में गाय और भैंस सहित अन्य मवेशियों में बांझपन की जांच कर उपचार किया जाएगा। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से अधिक संख्या में पहुंचकर शिविरों का लाभ उठाने की बात कही है। राजस्थान मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार करेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने

0: जयपुर में इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रवर्तन, आसूचना, सिंथेटिक ड्रग नियंत्रण, नशे की मांग और हानि को कम करने तथा क्षमता निर्माण पर समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अफीम, डोडापोस्त और एमडी जैसे मादक पदार्थों की जब्ती में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स अब तक करीब 730 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है और 93 ड्रग किंगपिन गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 12 संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति शिविरों और जागरूकता गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मेला कल से शुरू होगा। मेले में भाग लेने के लिए पदयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं के सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से शेरपुर तिराहे तक का किराया 10 रुपए रखा गया है।
1: रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मेले का रंग जमने लगा है। प्रशासन की ओर से मेले में सुरक्षा व्यवस्थाओं के व्यापक प्रबंध के अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री रखने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के निर्देशों के बाद रोडवेज की बसों में या श्रद्धालुओं को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। वहीं रेलवे की ओर से भी मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन की व्यवस्था की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: इधर जैसलमेर में रामदेवरा मेले के लिए श्रद्धालुओं का आना जारी है। मुख्य मेला 13 सितंबर को भरेगा। वहीं बाड़मेर के सेड़वा इलाके में आज से गुरु जम्बेश्वर मेला आयोजित किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में लगी राजस्थान की पोषण स्टॉल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और स्टॉल की सराहना की है। वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के राष्ट्रीय शुभारंभ के अवसर पर राजस्थान की ओर से सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान थीम पर यह स्टॉल लगाई गई थी। इसमें मातृत्व पोषण के कैश प्लस मॉडल के साथ मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत दूध, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट और शाला पूर्व शिक्षा के नवाचार को प्रदर्शित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 147 निकायों में मतदान जारी। 18वां ब्रिक्स समिट कल से नई दिल्ली में। सम्मेलन से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लंपी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए और राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29 तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं गजल गायक भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह के गाए कुछ गजलें।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे।

0: देता, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। अगली गजल सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में।

भूपेंद्र सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप ये गजल कार्यक्रम सुगम संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 9:30 हुए। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, देवी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओ, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना

0: हैं तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन।
3: आई एम गुड सर।
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
4: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
5: Sir, I like singing.
6: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
7: Yes, sir.
8: We like.
1: Lovely butterflies?
7: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
7: Yes, sir, we like it.
1: That's very nice, children.
9: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
7: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
7: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
7: Like us?
1: Would you like to listen?
7: Yes, sir.
10: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
7: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
7: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back.
7: Looking up at the sky.
1: I see a big white bear. Looking down at me.
7: As I lie on my back.
1: Looking up.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
2: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: अरे आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: मैं तो इसे अवभाग्य कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की।
1: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहनी हुई एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है?
3: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
3: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है,
2: मालूम नहीं।
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते,
2: अरे चल
1: नजदीक आ गए,
2: आगे आगे
1: आज आज आज चलो।
4: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
5: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
4: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगी, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
6: उन दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे, वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूँ।
5: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
4: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
7: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही है।
5: समय बदला और उनका परिवार

0: गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
1: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
2: होमी, ओ होमी।
3: जी माँ, आती हूँ।
2: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
3: क्या बात है माँ?
2: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
3: जी माँ, बिल्कुल।
2: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो। सब ठीक तो है ना बेटा?
3: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
2: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो। बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हा?
3: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
2: अरे
3: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
2: क्या कहा? डॉक्टर? तू डॉक्टर बनेगी?
3: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
2: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
3: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
2: कुछ नहीं होमी, बस करो।
3: माँ सुनो तो। अरे
0: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
4: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
1: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया। लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
0: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
1: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
0: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
3: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, बैठो, यहाँ बैठो।
3: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी, जरा इसे देखो।
3: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
3: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ होमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
3: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है, ये फोटो हमारे

0: समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो उम्मीद, हमें तुम पर फख्र है।
1: धन्यवाद सर।
0: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानिकशाह जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
2: मानिकशाह स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानिकशाह ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए एक रुपया बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
0: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
2: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
3: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
2: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
3: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
0: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
2: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपनी करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में

0: वे रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
0: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विनेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, प्रातः के 10 बजे। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप ही की बातें हैं, आपकी ही पसंद है, आप ही की यादें हैं और आप ही की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं?
1: जी मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी मैम अभी तो खाली है, बस आपका सीजन चल रहा है अभी।
0: अच्छा
1: जी, अभी गांव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेते हैं।
0: जैसे क्या काम कर रहे हैं गांव में? कौन सा गांव है आपका?
1: जी मेरे गांव का नाम है कीरतपुरा।
0: कीरतपुरा
1: जी।
0: अच्छा कैसा है आपका गांव? अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको?
1: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा
1: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
0: अच्छा ऐसी मान्यता है, ऐसा तो, लोग कहते हैं।
1: जी मैम वहाँ पे उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे में, गर्मी के सीजन में उनको इतना पसीना निकलता है।
0: अच्छा अच्छा
1: मेरी आपसे 2 महीने पहले बातचीत हुई थी।
0: अच्छा कब हुई थी?
1: जी मैम मेरी 22 जून को हुई थी आपसे।
0: अच्छा आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख?
1: नहीं मैम तारीख याद है, आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
0: बहुत सुंदर। किस तरह के कार्यक्रम सुनते हो विविध भारती में? कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: जी आपका सखी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है, यानी आपको साइंस पसंद है।
1: जी मैम।
0: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है।

0: है ना, ज्ञान विज्ञान को
1: जी जी
0: लेकर।
1: मैम,
0: और सखी सहेली
1: जी
0: में
1: मैम,
0: आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा?
1: जी मैम, हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती सर, तो हम तो बचपन से ही सखी सहेली सुन रहे हैं, और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से ही मिले लेनी चाहिए।
0: हाँ, ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना। तो
1: जी
0: कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने? जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
1: जी मैम, खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
0: खाना खाना आता है बस, है ना।
1: जी मैम,
0: हाँ, और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज पानी ज्यादा डाल दिया, आज तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी,
1: नहीं
0: ऐसा?
1: मैम, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार करें।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो फरमाई।
0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल रहे हो?
0: हाँ जी, बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगारे बात कर रही हूँ दीदी। 3 महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को। 3 महीने से आपके आपके साथ ही बात हुई हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगारे
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: गाना सुनना है दीदी। आप कैसे हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करे दीदी का। मेरी बेटी आई थी कल, तो उन राखी बांधने के लिए तो मेहमान का खाना बनाया दीदी। जो आए थे अपने, मेरी मम्मी पन आई थी। हाँ
0: अरे वाह,
1: बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने। थक
0: थक गई फिर।
1: गई। आज मेरा भैया पन आए थे।
0: अच्छा, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो, विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी हम तो रेडियो सुनते ना दीदी। हेलो फरमाइश पन सुनते हो दीदी?
0: अच्छा,
1: हाँ चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ।
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती।
1: चालू रहता है सुबह हमारे अमरावती केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ,
0: हाँ
1: और 11 बजे से पूरा हमारा विविध भारती चालू रहती है।
0: अच्छा, तो एक बात बताइए आप।

0: इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी मेहमान के लिए।
0: पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: आओ दीदी खाने को।
0: हाँ अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना पूरन पोली खाने मुझे।
1: आओ ना अभी अमरावती आएगी ना हमारे घर आना दीदी।
0: पक्का पक्का बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं, मेरे को तो थकान रोज इसमें रखती दीदी, रोज मैं काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोता पोती है
0: हाँ।
1: उनको इससे ले जाना छोड़ना लाना ये सब मैं करती हूँ दीदी।
0: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ तो।
1: दूर हो जाती दीदी। हाँ
0: हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
1: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी।
0: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: अरे दीवानो मुझे पहचानो।

0: महफिल में कैसा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, न कोई फरियाद, न कोई नुमाइश की, जब झुका कर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश थी।
1: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
2: मंदाकिनी जी से।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बोल रही है ये तो बताइए।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
2: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं।
2: जी जी।
1: क्या कर रही हैं इन दिनों?
2: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
1: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
2: धनी बैग का काम है।
1: बैग का?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या है?

0: याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
1: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
0: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
1: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके वजह से फिर राजा रंग का फिरकी वाली सारे गाने मैडम उनके तो
0: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
1: घर का नाम बबलू है मैडम।
0: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
1: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
0: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने लाके देते थे आपको?
1: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
0: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए?
1: वो गाड़ी आती थी चार पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।
0: लड़के लोगों के पास बंदूक नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जब भी तो हमने जानना चाहा।
1: चाबी की मोटर आती थी ना, जो उसको चलाते थे अपन।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी।
0: उसको देखकर तो मजा आता
1: है। बचपन की यादें में कहीं बोला नहीं सकता मैडम।
0: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे? आपके बच्चे हैं, क्या लाके देते हैं उनको खिलौने? लाके देते हैं?
1: शादी नहीं मैडम।
0: अरे, आपकी तो शादी नहीं हुई। चलिए, तो आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
1: जी जी सही।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए?
1: फिल्म का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके कब चंदनिया गरमा गरी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए, इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं।

0: जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने की टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, कि खाना अलग अलग किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं, वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
1: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है, तभी आपको वो पसंद है।
0: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ, सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ।
1: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ
0: मैडम
1: कैसे
0: जैसे
1: बताते
0: कि
1: हैं।
0: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू, ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, और ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है, और मटर पनीर

0: लेता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है, और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ।
1: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
0: मैडम जी ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती है तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
1: सही बात है ना। और जिनको खाने का शौक होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना।
0: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ। मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना,
1: हाँ,
0: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है, पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन हैं उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन है, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए है ना, स्ट्रीट फूड चाहिए, तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
0: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकल जाती है, शाही सवारी।
1: अच्छा हाँ,
0: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है, बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
1: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा, और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
0: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए हैं।
1: बहुत बड़ी बात, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं, और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
0: जी जी मैडम
1: जी, तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्मों का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
1: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में, चलिए आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी।
0: अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, 1 घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ मतलब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग हैं जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: भारती के जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने।
0: आपने पत्र लिखा मनचाहे गीत में।
1: बिल्कुल छुट्टियाँ बहुत जारी है, लेकिन उसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने 1 ही दिन कर दिया, ये आप 2 दिन ही किया जाए।
0: चलिए, तो आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्शन देते हैं। जैसे मतलब हमारे पास 2-3 कारीगर है और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो। फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है,
0: हाँ, ये
1: ये
0: सभी
1: सब
0: कार्यक्रम आपको
1: कार्यक्रम।
0: पसंद हैं, बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो बताइए आज
1: ये
0: कौन सा
1: मेरा
0: गीत सुनवाएं।
1: आज गीत है, ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, जो के जय किशन साहब की पुण्यतिथि है
0: जी जी
1: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वह नहीं सुनवा दीजिए। और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
0: चलिए, तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: झूमता माँ

0: हेलो,
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है। शायद इस हकीकत से आप अनजान है, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं?
1: मंदाकिनी मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम जी।
0: दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम जी।
0: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहाँ तक याद
1: मैडम
0: आ रहा है।
1: बिल्कुल, 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
0: चलिए, तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा
1: जी
0: हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका
1: बहुत ही बढ़िया है
0: शहर?
1: मैडम,
0: आपका शहर बताइए
1: बहुत ही
0: उदयपुर।
1: बढ़िया एकदम मैडम।
0: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
1: बारिश अभी हुई नहीं है 1 महीने से, कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है
0: बिल्कुल सही
1: अभी,
0: कहा।
1: और आसार है, झीले अभी खाली है।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती।
1: जी
0: लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने।
1: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम,
0: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना।
1: फिर भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
0: हाँ, खैर, घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने
0: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है?
1: जी, अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन महाकाल की नगरी,
0: अच्छा।
1: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया, बड़ा ही अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
0: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके, जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने?
1: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुंचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ, है ना।
1: अभी वापिस मानस बन रहा है इसी महीने में।
0: चलिए, तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
1: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है, फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है खोया खोया।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जलाकर तो देखो, मोहब्बत की समा तो देखो, दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है, जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतनी खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए हैं आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामा पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: अपनी जगह जो है बदायूं, इसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में क्योंकि हम कभी आए नहीं हैं, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
1: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहाँ पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
0: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते होंगे।
1: बिल्कुल मैम, यहाँ पर टूरिस्ट हूँ, जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं, जो श्रद्धालु ज्यादा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
0: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहाँ तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
1: जी मैम, मैं वहाँ पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
0: खैर चलिए, इतना फायदा तो आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
1: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जो दुखद समस्या वो सुनाने के लिए गुरुजी को।
0: जी वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वहाँ लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
1: वैसे तो मैम, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
0: अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी
1: मैम, हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लव गुनगुन शुभ अमेरी वाय सरका।
0: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए आप कौन सा गाना सुनेंगे।
1: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, और इसमें बेहतरीन सुनूंगा तेरी बेवफाई का, सिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: जी, मैम, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: भोपाल से राम बाबू जी स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी, भैया, भाभी, परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना।
1: जी,
0: तो
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जिस प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में, और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए आपसे, मतलब बात करी ना उससे 2 मिनट पहले, मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ अभी।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए। बोले का है, मतलब वहां का डालना। जी, वहां डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैम ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको। बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती तो। हाँ जी, बिल्कुल। उनने दोनों मैम, मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा था, उन दोनों ने लिया एड्रेस। बोले हम भी डालेंगे पत्र,
0: क्या
1: हम भी बहुत
0: बात है।
1: सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम। चलिए ठीक है।
0: उन्होंने ऐसे कहा जो
1: जी
0: पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं। हाँ
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं और जिंदगी
1: जी,
0: बन गई है विविध भारती आपकी, है ना।
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे, जब से रेडियो चालू हुआ, जब से हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है। हाँ जी,
0: अच्छा आपने
1: और हमारा
0: अपने
1: बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की
1: जी
0: कोई बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए तो वो नहीं है, शांत हो गए थे।
0: अच्छा आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: अपने ये ड्राई क्लीन का, लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है। आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है।
0: चलिए अच्छी बात
1: जी
0: है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और
0: आइए
1: मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम नमस्ते, मैं शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी देवलूर।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष जी?
1: हाँ जी अच्छे हैं मैम।
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे है तो बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है। पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल जी, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा, कंपाउंडर की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे, उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गार्ड सब लगाना ही पड़ता है ना।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम
1: तो
0: होता है।
1: पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना। और जब अंतिम दिन उन्होंने जब कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें सब करना पड़ता है हमें।
0: हाँ
1: हाँ, बराबर पहचाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। तो पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें।
0: लेकिन उसका इलाज करते तो समय कठोर बनना पड़ता है ना।
1: बिल्कुल बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी जी जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ जी, ये गीत सुना गया, धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश। जी हाँ, रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं भाई।
0: अच्छा, स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली पलो फरमाइश। इतना मनोरंजन, यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड में मशहूर है कल।
0: क्या बात है। कितना
1: हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सखी सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है ताई।
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदाकिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, जो कि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको चाहिए।
0: चलिए, अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज?
1: हाँ जी हाँ चाहिए। आपकी बात, आपकी आवाज, यानी हमारा विविध भारती, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए हमको भी समझो कुछ होता, उन्होंने नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा। हमें इसकी खुशी हो रही है कि किसकी हद नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ जी हाँ। अच्छा, प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति मैं लेंगे ताई?
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नई मंजिले ये नए रास्ते, कांटों से है इसे बचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं? परभणी में रहते हैं?
1: जी हाँ, परभणी में रहते हैं।
0: तो अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमें। परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी नागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है, जहाँ का उरुस के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं। और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है ताई, वो परभणी हजरत तुराबुल हक शाह के दरगाह का उरुस यानी मेला।
0: बिल्कुल,
1: ये हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभणी शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है। सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है एक सरगम फिल्म का।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228702888, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी।
1: हेलो फरमाइश विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: प्यारा
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
0: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
0: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। एफएम लाइन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे लीजिए पेश है गैर फिल्मी नगमों व गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं फाल्गुनी पाठक द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

0: अलग होंगे।
1: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े,
0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: आप सुन रहे हैं फाल्गुनी पाठक द्वारा गाए कुछ गए फिल्मी नगमे, कार्यक्रम सुगम संगीत में।

0: अशर, अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में?
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगी। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में आपको सुना रहे हैं शाल मलिक होलगड़े की आवाज में यह नगमा फिल्म इश्कजादे से। शब्द रचना है कौसर मुनीर की, संगीत है अमित त्रिवेदी का।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

फिल्म सोचा ना था से सुनवा रहे हैं ये अगला गीत आपको सोनू निगम और संजीव ने की आवाज में। संगीतबद्ध किया है संदेश शांडिल्य ने, गीतकार है इरशाद कामिल।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये नगमा फिल्म कहो ना प्यार है से। इसी नगमे के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवू ओजोफू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने यह बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर 108.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में

0: प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गीत दूसरा आदमी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जो कहीं ना कहीं संबंधित है आंखों से, नजरों से, नैनों से।

0: रफी और गीता दत्त की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे सीआईडी फिल्म से, जहां निसार अख्तर ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: येसुदास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे सुनैना फिल्म से। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और उन्हीं का संगीत।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितम्बर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: चांदनी चौक टू चाइना, ये था फिल्म का नाम। शंकर महादेवन श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रजत अरोड़ा ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: शंकर महादेवन की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, लक बाय चांस फिल्म का नाम। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म का नाम जयदीप साहनी ने इसे लिखा अमित त्रिवेदी का संगीत। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और मैं आज सफर में आपके साथ हूं अनुराधा उपाध्याय। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिनमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो ये पोस्ट इबारत हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं, कौन से गीतों की लिस्ट बनाई है और वो गीत हमारे लिस्ट से मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं। और साथ ही अगर नहीं भी मेल खाते तो भी आप वहां पर अपने पसंदीदा गीत इन शब्दों से चुने हुए लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की बिना देरी के, लेकिन एक बार इबारत फिर से पढ़ देते हैं ताकि जिन लोगों ने लेट ट्यून इन किया है, हमारे साथ लेट जुड़े हैं, वो भी अपने संदेश हम तक पहुंचा सके। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारे लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब शाम से सजाए हैं, मेरे मन को छूकर तुमने अरमान जगाए हैं, खिले गुंचे हवाओं में खुशबू सी है, गा रही ये जमीन मौसम के इशारे हैं, सोचती हूँ कह दूं या चुप रहूं, दिल की बात जुबां तक लाऊं या नहीं, तुम सामने हो तो लगता है इससे खूबसूरत कोई पल है ही नहीं, तुम मुस्कुराता हुआ चांद मेरा, मेरी एक मुस्कान के आगे, तेरी एक मुस्कान के आगे फीका लगे ये संसार सारा। जी हाँ, ये थी इबारत और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की इस गीत के साथ। साथ ही साथ आपके संदेश हम तक पहुंच गए हैं, वो हम लेते हैं इस गीत के बाद।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लहू के दुरंग फिल्म का नाम, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बपी लहरी का संगीत, और मुस्कुराते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया।

आपके संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं और खासकर इस मुस्कुराते हुए गीत के लिए बहुत से मैसेजेस आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में महबूब और महबूबा की बातें होंगी, जहां एक दूसरे का बखान करते नहीं थकते हैं। उनके चेहरे पर वो दिलकशी है कि एक मिनट भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और एक दूसरे को निहारते हुए गुफ्तगू करते हैं। इसी बारे में कुछ कहा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत इबारत है और इसमें प्रेमी मन की उस उधेड़ बुन और समर्पण को दर्शाया गया है, जहां एक तरफ आंखों में सजे ख्वाब और दिल में जगते अरमान है, तो दूसरी तरफ ये संकोच भी है कि दिल की बात जुबां पर लाऊं या नहीं। हमारी श्रोता कहती है कि ये जो प्यार का एहसास है, उसे महसूस करते हुए उस सुंदर पल की याद में वो खो गई हैं और प्यारी सी मुस्कान के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता कहते हैं कि इससे खूबसूरत पल और कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्कुराते हुए चांद को सामने देखना। अब वो चांद आसमान में है या फिर आपके सामने बैठा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में कुछ ऐसा ही मीठी सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जहां पर ख्वाब भी हैं जो ख्वाब जगा देते हैं। जी हाँ। एक श्रोता ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखकर भेजी है कि पलकों पर कुछ शामें ठहरी थी, उनमें तुम्हारे आने की खुशबू थी, तुम आए तो हवा ने धीरे से करवट ली और मौसम ने जैसे कोई राज कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये कविता रूपी इबारत जो है प्रेम के आरंभिक एहसास, मौन आकर्षण और प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण की कोमल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो उन्हें लगता है कि ये जरूर आज प्ले होंगे। देखते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की ये जो इबारत है, इसमें कहीं ना कहीं मुस्कान, मुस्कुराहट और किसी की खुशबू है। जी हाँ। और हम किसी और की मुस्कुराहट के पीछे तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि आपका अपना चेहरा जो मुस्कुराता है, खिलता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए कि ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, वो जो मन को लुभाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने मुस्कान के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं इस खुशी को बरकरार रखने के लिए? मुझसे साझा कीजिए अपने संदेश और बहुत अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़कर। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हरजाई फिल्म से, निदा फासली ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत। प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक संदेश जो है हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी ने कहा सुबह उनसे कि आपके लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब सजाए हैं, कल शाम से सजाए हैं, और उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी है, और ये अपनी अदरक इलायची वाली चाय का आनंद लेते हुए, साथ ही थोड़ा बहुत साफ सफाई का कार्यक्रम जारी रखते हुए इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार और विश्वास जीवन में बना रहना चाहिए ताकि मिठास बनी रहे, जिसके आने के एहसास से ही मन में उमंगे उठने लगे, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, हवाओं में घुली खुशबू, खिलती कलियां और मुस्कुराता मौसम सब तुम्हारे आने का ही इशारा है। तुम मेरा वो चमकता चांद हो जिसकी एक मुस्कान के आगे ये पूरा संसार फीका लगता है। अरे वाह, आपने तो एक इबारत, नई इबारत ही लिख दी इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, बहुत खूब। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं जिससे मन खुश होता है और फिर अपने आप ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट छाई रहती है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो चेहरे पर भी दिखती है और हमारे लिए तन,

मन दोनों तरीके से बहुत अच्छी होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये इंसान के भीतरी सौंदर्य, करुणा और ऊर्जा का आईना होता है। साहित्य में चेहरे की मुस्कान और आंखों में छिपे प्यार को ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान माना गया है, जो बिना कुछ बोले भी सामने वाले का दिल जीत लेता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा एक ऐसा शस्त्र है जो नफरत की आंधियों को शांत कर सकता है। ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है और आज के तनावपूर्ण युग में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में व्यस्त है, ऐसे में चेहरा ईश्वर के साक्षात आशीर्वाद की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रेम और आनंद ही है।

दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रेम और आनंद ही है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश ये, और साथ ही साथ सकारात्मक सोच तो है ही जो हम अपने आप को खुश करने के लिए रखते हैं, स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। या समझो कि हम कई बार कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं होठों पर खिली मुस्कान एकदम आंखों की चमक बन जाती है। तो ऐसी कोई बातें, या हाल फिलहाल आप कहीं घूम के आए हो जिसने आपको रिफ्रेश कर दिया हो, इस तरह के अनुभव भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवाती हूँ ये अगला गीत, और साथ ही साथ इस गीत के अभिनेता, यानी कि ये गीत कौन से अभिनेता पर फिल्माया गया है ये भी मुझे बताएं।

सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ये कौन से अभिनेता पे फिल्माया गया है, जी हाँ बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती पर ये फिल्माया गया है और बहुत से सही जवाब हमें मिले हैं। साथ ही आपके संदेश मिले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छह गीतों की इबारत में से चौथे नंबर पर लिखा ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें अच्छा लग रहा है। जी हाँ धन्यवाद। गुंजे लगे हैं कहने, ये गीत बहुत ही प्यारा है, हमने सोचा था लिखेंगे पर भूल गए, कोई बात नहीं ये गीत शामिल हो चुका है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में किसी भी वजह से चेहरे पर मुस्कान आए, दिल को सुकून मिले और रिश्तों में प्यार बना रहे, नफरतें तो बहुत है दुनिया में, हम क्यों ना थोड़ा सा प्यार बांटे। जी हाँ बिल्कुल।

0: साथी श्रोता लिखते हैं कि दिल की बात कहें या ना कहें, ये हमेशा एक असमंजस छाया रहता है, क्योंकि कहने से कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं और कहने से कई बार वो रिश्ते पार भी हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शब्दों का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे में। और आप किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब सोचते हुए उसके बाद अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द एक बार कहे जाए तो फिर वापस नहीं लिए जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिख के भेजी है कि तुम्हारे साथ बारिश में भीग जाने का ख्वाब कब से मन में है, तुम समझ सको तो मेरे मौन को समझ लो, तुम्हारी हथेली पर ठहरी बूंदों में से कोई अनकही कहानी पढूं और तुम मेरे मौन को बिना कहे समझ लो। जी हाँ, ये चंद पंक्तियां मैंने पढ़ी है क्योंकि ये एक तरह की इबारत ही लिख डाली है इन्होंने, और मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव साझा करें क्योंकि वो अनुभव पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा सबको जानकर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुरीला सफर।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

अमित कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तेरी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आती है गीत संगीत से और एक शांति और सुकून मिलता है उन्हें अपने पसंद के गीत सुनकर, और पसंदीदा गीत बज जाए अपने आप तो फिर क्या कहने। इस प्रोग्राम में कुछ गीत जैसे कि तराना का गीत एक अरसे के बाद वो सुन रही हैं और इसीलिए उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा गानों को वो लगातार दिन भर सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूजिक एक थेरेपी है और जो हम अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए सुन सकते हैं हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूजिक सुनते सुनते, संगीत सुनते सुनते हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, हमारे बाकी काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। हमारे और श्रोता लिखते हैं कि जब पंछी आकर पानी पीते हैं एक एक करके और उन्हें वो निहारते हैं, देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान आ जाती है ये देखते हुए, और ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं और ये पंछी

भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन जरूर राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि धुंध और कोहरे से भरी हुई ये पर्वत घाटियों में गूंजता ये सुंदर गीत उन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे लिए एक फायदे का सौदा होती है, इसके जरिए दुनिया जीती जा सकती है। और उन्होंने काफी साल एक डाक विभाग में गुजारे हैं, सरकारी विभाग में, और वहां पर उनकी मुस्कान उनका शस्त्र हुआ करती थी। गुस्से भरे शख्स को भी वो इस हथियार के सहारे शांत किया करते थे। और एक बार किसी ने उनके सामने पैसों का बंडल डाला डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने एक डायलॉग मार दिया एक फिल्म का कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं, और वो चौंक गए और बस खिलखिला उठा सारा समाज जो था। जी हाँ बिल्कुल, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे कि ये अगला गीत। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

ये सुधास की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। कैफी आजमी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज में गीत और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते हुए। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफर के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी माता वैष्णो देवी गोल्डन टेंपल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के जमाने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो विविध भारती, इस परिवार यानी कि विविध भारती परिवार से जो सुकून मिलता है मानो दिल में किसी ने मरहम लगा दिया हो और गीत बजा दिया हो। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मरहम लगाने की जरूरत ना पड़े लेकिन हाँ आपके दिल को आनंदित जरूर करते रहें। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेहरे अगर हंसमुख होते हैं तो उन्हें देखते ही बस उनसे बात करने का जी चाहता है, किसी न किसी बहाने बस उनसे बात हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे हमारे साथ दिल्ली में हुआ एक ऑफिस में और एक सेक्रेटरी थी, उन्हें देख के उनका चेहरा देखकर अभी तक नहीं भूले हैं वो और बस बहुत ही हंसमुख थी और उनका वो चेहरा दिल में उतर आया था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए रखने के लिए, मन को झूमता हुआ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके अलावा कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अभी रिसेंटली जिससे कहीं ना कहीं दिल प्रफुल्लित हो जाता है, वो जरूर लिखकर भेजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये एक घंटा यानी कि 60 मिनट वीबीएस टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना, बहुत ही रिश्तेदार रखना

0: होता जरूर है क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस जरूर हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब ऐसी चीजें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो जरूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी है, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है। कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को, इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा दो से तीन श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतजार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन बोह लेती है और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है इसमें बहुत से गीत आसान थे गैस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मजा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है जिससे वो जिंदगी को और सकारात्मक नजीरे से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्यार जिंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

फिलहाल सोच से परे ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे और इस गीत के साथ ही इजाजत चाहते हैं। आज का सुरीला सफर आप सुन रहे थे अनुराधा के संग।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 45वीं कड़ी।

0: जब विवाद खड़ा हो रहा था, उसी समय वंदे मातरम के संदर्भ में एक असाधारण घटना भारत के बाहर घटी। वो ऐतिहासिक घटना आज भी इतिहास की दृष्टि से बहुत कम लोगों को पता है, और इस घटना के शिल्पकार थे महाराष्ट्र के कुछ देशभक्त खिलाड़ी। ये घटना राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में घटी। ১৯৩৬ में जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।
1: Like a modern Caesar, he stands on the balcony to receive the salutes of the athletes of 50 nations.
0: उस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन के लिए अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नामक संस्था के कसरतबाजों को आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय व्यायाम पद्धति, योग तथा शारीरिक शिक्षा के प्रदर्शन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के समय हुए मार्च पास्ट में भारतीय दल ने अपना ध्वज फहराते समय यूनियन जैक के बजाय तिरंगा ध्वज फहराया था। इतना ही नहीं बल्कि ओलंपिक खेलों के निमित्त हुए कार्यक्रम में भारत के राष्ट्र गीत के रूप में वंदे मातरम गीत गाया था। इस दल का नेतृत्व प्रखर राष्ट्रभक्त डॉक्टर सिद्धनाथ काणे ने किया था।
2: हमारा देश पराधीनता में था, तब विदेश में इन खिलाड़ियों ने अपने तिरंगे झंडे और वंदे मातरम के माध्यम से भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने उजागर किया। वंदे मातरम के कारण देशभक्ति की भावना सामान्य नागरिकों की तरह ही कलाकारों और खिलाड़ियों में भी पैदा हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले और आज भी व्यायाम के प्रसार का काम निष्ठा से चला रहे 110 साल पुराने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने आज भी वंदे मातरम गायन की परंपरा को आदर के साथ आगे जारी रखा है। ये है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संगीत शिक्षक श्री इंगले द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम गीत के बाद के अंतरों पर आपत्ति जताई गई थी। फिर भी वंदे मातरम शब्द या उसके उद्घोष का किसी ने भी विरोध नहीं किया था। 1941 में मुंबई से गुजराती भाषा में वंदे मातरम नाम का अखबार निकलने लगा तो 1942 के चले जाओ या भारत छोड़ो आंदोलन में तो इस नारे ने आंदोलनकारियों के मन में सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया।
1: दूसरे विश्व युद्ध के बादल छाए हुए थे, तब भी आर्थिक मंदी में फंसे अंग्रेजों को भारतीय सेना की मदद तो चाहिए थी, पर उसके बदले स्वतंत्रता देने के लिए वे अनुकूल नहीं थे। चर्चिल जैसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय समय पर भारत और यहां के पूजनीय नेताओं का उल्लेख अपमानजनक तरीके से करता था। इस आंदोलन के दौरान होने वाली हर सभा में वंदे मातरम के नारे सागर की लहरों की तरह उमड़ते थे। अंग्रेजों की गोलीबारी, आंदोलनकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़, लाठीचार्ज जैसे अंग्रेजों के आतंक के हथकंडे जारी थे। चौथी मद्रास कोस्टल डिफेंस इन्फेंट्री की एक टुकड़ी, जो ब्रिटिश शासित भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी, इस टुकड़ी के

अंग्रेजों के खिलाफ तोड़फोड़ की योजना में शामिल होने की गुप्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ लगी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सैन्य पुलिस ने लगभग 10-12 विद्रोहियों को दिनांक 18 अप्रैल 1943 को पकड़कर सैन्य अदालत के सामने खड़ा किया। 6 जुलाई और 5 अगस्त 1943 को बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में इन आरोपियों की जांच हुई और 9 बंगाली युवा सैनिकों को फांसी दे दी गई। मद्रास की जेल में फांसी के फंदे में गर्दन डालने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए मातृभूमि का जय जयकार किया। 27 सितंबर को 21 से 25 वर्ष की आयु के ये 9 युवा शहीद हो गए।

0: 1942 के इस काल में महात्मा जी के नेतृत्व में सारा भारत इस अंतिम लड़ाई को मन ही मन निश्चय कर करेंगे या मरेंगे की भावना से स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़ा था। इसी दौरान अंग्रेजों की नजरबंदी में रह रहे सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर भारत से बाहर निकल गए। 1937 में वंदे मातरम के संबंध में कांग्रेस ने एक समिति स्थापित की थी। मुसलमानों की आपत्तियों के कारण वंदे मातरम की काट छांट को इस समिति ने मान्यता दी। बाद के समय में सुभाष चंद्र मन से भी कांग्रेस से दूर चले गए।
1: भारत से बाहर निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की धुरा संभाली। सुभाष चंद्र और आजाद हिंद फौज के कारनामों ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। आजाद हिंद फौज का कदम कदम बढ़ाए जा गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वंदे मातरम का स्थान कायम रहा। इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारियों की संस्थाओं ने वंदे मातरम शब्द का ही समर्थन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र की भी वंदे मातरम पर अपार श्रद्धा थी।
0: आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र द्वारा किए गए भाषण के बाद वंदे मातरम की ध्वनि मुद्रिका प्रसारित की गई। आगे चलकर यही संगीत रचना आजाद हिंद फौज में मार्चिंग सॉन्ग के रूप में इस्तेमाल की गई। इस संगीत रचना के रचनाकार थे तिमिर बरन भट्टाचार्य।

0: भारतीय बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में शास्त्रीय संगीत के कई बुजुर्ग फिल्मों की ओर मुड़े। न्यू थिएटर्स के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक टिमिर बरन भट्टाचार्य थे। टिमिर बरन भारत के पहले गिने चुने शास्त्रीय वादन करने वाले सरोद वादकों में से थे। शास्त्रीय वाद्य संगीत में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से उन्होंने सरोद वादन की शिक्षा ली थी।
1: देवदास, इस कुंदन लाल सहगल अभिनीत फिल्म के उनके द्वारा दिए गए संगीत को लोकप्रियता मिलने के बावजूद वे फिल्मी दुनिया में नहीं रमे। बैले जैसे समूह नृत्य के लिए, नृत्य नाटिकाओं के लिए उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। सिंफनी और पॉलीफोनी जैसे प्रकार हमारे शास्त्रीय संगीत में तो नहीं है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होने के कारण भारतीय राग रागनियों को सिंफनी की तरह कैसे संयोजित किया जा सकता है, इस दिशा में उन्होंने प्रयोग शुरू किए।

वंदे मातरम की उनके द्वारा बनाई गई रचना को उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना माना जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी संगीत प्रयोगों का उत्कर्ष बिंदु इस रचना में साधा गया है। दुर्गा राग में बंधी ये संगीत रचना बंगाल के प्रसिद्ध रविंद्र संगीत से अलग है। वंदे मातरम को संगीत देने वाले शुरुआती दौर के संगीतकारों में से अधिकांश बंगाल या महाराष्ट्र के ही संगीत विशेषज्ञ थे। रविंद्रनाथ की संगीत रचना बंगाल में लोकप्रिय थी ही, फिर भी उससे अलग अधिक जोशीली और मार्चिंग सॉन्ग के लायक तालबद्ध संगीत रचना तिमिर बरन ने की। वंदे मातरम की उपलब्ध संगीत रचनाओं में से

0: नेताजी सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र लड़ाई खड़ी की। अंग्रेजों को दी गई वो सबसे बड़ी सशस्त्र चुनौती थी। दुर्भाग्य से नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्राकृतिक आपदा के कारण चलो दिल्ली का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच करने वाली आजाद हिंद फौज को भारत की पूर्वी सीमा के पास पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज को मिले जनता के अपार समर्थन के कारण अंग्रेजों को इन सैनिकों को दी गई सजाएं रद्द करनी पड़ी।
1: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 45वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आर्यना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
5: For BRICS particularly, higher economic activity.
1: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धा

0: भी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता है।
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए

0: उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
2: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
4: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1,942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के

0: निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्याना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

चलना मगर ये किसी से न कहना, इनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में एक गीत आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

0: मिले दिल तेरा नम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: क्या होना क्यों सताते हो, होगा होगा।
2: संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले इस फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यही संपन्न होता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं।

0: फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना? खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या हाँ। बात है। बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, सावन का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और मुझे विविध भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं समझे मेरे घर से।
0: अच्छा।
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है, और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने का बोल है।
0: जी बहुत सुंदर,
1: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके विविध भारती से।
0: आरती जी
1: आपने सौभाग्य है
0: जी
1: मिला जो आपका में बात करने का।
0: आरती जी आपने समय निकाल करके कॉल किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए खुश हम भी बहुत हैं और इसी बात पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से? अरे वाह पुष्पा जी। हाँ। बताइए कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी
0: जी। और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: दो लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ भरा पूरा परिवार है, हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी।
0: आपकी ये फल की दुकान है तो अलग अलग किस्से कहानियाँ भी तो मरीज के जो परिवारजन होते होंगे वहाँ पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है, जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए तो सब कोई अच्छी सुनाता है, कोई अपनी दुखी ज्यादा रहती है यहाँ पर, दुख मतलब
0: जी जी
1: ज्यादा वितरण करते
0: हैं। तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं?
1: हाँ भगवान जी कहते हैं कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: टेंशन नहीं लो मतलब
0: जी। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं तो मेरी रूए से चैन दे प्यार दे जिंदगी गए हो।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ, इंदौर से।
0: जी ज्योति जी, इंदौर से। बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ
0: जी। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी, बच्चे हैं छोटे।
0: हाँ,
1: एक 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जी
0: स्कूल जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं, तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, एक नहीं जाता छोटा।
0: जी, तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ, बहुत कम मिलता है।
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी सुन लेते थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती है ना?
1: जी,
0: जी, तो ज्योति जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अरे तो अच्छा है, ये भी अच्छी हूँ।
1: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
0: परिवार में मेरा छोटा बच्चा
1: हाँ,
0: और मम्मी जी।
1: अच्छा परिवार है, मतलब भरा पूरा परिवार है।
0: हाँ परिवार है।
1: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
0: मैं घर पर रहती, छोटा बेबी है 5 महीने का।
1: अच्छा, ओ ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
0: हाँ
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: ABCD मतलब गन गन गणपति वाला गाना।
1: ABCD फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: वैष्णवी मुड़े।
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नांदेड़ से।
0: जी वैष्णवी, बताइए नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रीडर के साथ नचती।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी जी, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: नहीं, उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और जीवन भारती मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए, सितारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत

0: अच्छे लगते हैं।
1: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं, जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं। क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
0: फूलों की ताजगी चांदनी की चमक, बिगड़ खाती रेडियो तो है।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
1: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, नीशागढ़ जिला अशोकनगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी ध्यानदार पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमीन खामरिया से बोल रहे हैं।
0: खामरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में कभी भी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का,
0: जी
1: मतलब 350 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, आप परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरे दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग भारत पूरी परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।
1: तो कितनी

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किसका कॉल लगा है, अपना नाम बताइए।
1: कृष्णा लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं।
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं। तो इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी खेत में नहीं, घर पे हूँ और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं।
0: हाँ हाँ।
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: जाती हूँ दीदी, मेरी बहू भी है।
0: हाँ हाँ, तो वो भी जाती
1: हैं? हाँ, दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना। कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए सहेली।
1: मैम, मैं अनीता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका, दिल्ली से।
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने बारे में बताइए अनीता जी।
1: हाँ मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और हेलो सहेली में फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद, सबका नंबर लगता रहे।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतजार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
1: हेलो सहेली, ये भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊं मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
0: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय, आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
1: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है, घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत।

0: बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं अपने इंडियन जो
1: जी और जी जी जी और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीजें, हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीजों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: हाँ, जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शौकीन होगी तो और कौन होगा।
1: जी हाँ,
0: जस्ते हैं और कोई तो पहन नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
0: सारी चीजें
1: जी, इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्नचित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं, और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है, तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे आ जा रे।
1: बिल्कुल, चलिए, तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद
0: जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना?
1: हाँ, निकल जाता है ना दिन भर। ज्वाइंट फैमिली है, तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई होती है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है।
1: हाँ, एक ही है।
0: जी, बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा?
1: नहीं नहीं मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर? परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
1: है ना? बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे, बड़े वाले के 2 बच्चे,
0: तो ये तो ऐसा खिलखिलाता सा परिवार है ना?
1: हाँ
0: जी।
1: और साथ में ननद भी रहती है, 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते।
0: अच्छा, आपकी एक ननद भी साथ में रहती है।
1: हाँ
0: शांति जी, बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288, 2867-0288। मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी, उन्हीं के स्वर में। आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था। कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है। माया क्या करे क्या न करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे। उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था, चिट्ठी आई है। मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं। दिल के तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। दिल की तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं। थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में। अब जिद छोड़ो, मुंह ना मोड़ो, खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है, चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें। नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें। सलाद में ककड़ी जरूर खाएं। रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप? और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं न कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सच ही तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। ये सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक

परंतु ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूँ। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूँ, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सब।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई।

किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती।

0: वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए। आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खातों का। यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं। लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।
1: लिखे जो

0: उतर जाए।
1: आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, क्या पागलपन है, वो यहाँ कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत उसे मिले ही हैं। उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

पड़ा पर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया उत्ती रूठा यार मना मित्रा यार को यार बना मित्रा न खुद से रहो खफा मित्रा।

0: है भगवान
1: में मरता जा मित्रा
0: सजता करता जा मित्रा
1: किसी से झुकाता चल मित्रा
0: जग पर चाहता

आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा।

ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे ही अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम के मंडल के अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे। हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको सुनवाते हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ प्रमाण सुनेंगे ठीक 5:05 पर कार्यक्रम नारी लोक। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम के 5:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 6:30 पर। राजस्थान में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। शाम के 7:00 आप सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम।

शाम के 7:30 में प्राप्त सुनेंगी हमारे स्थानीय श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगी दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषीय बोल बाय बोल कमेंट्री का सीधा प्रसारण। वहीं हमारे मोबाइल ऐप से जुड़ी श्रोता सुनेंगी विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। रात्रि के 9 बजे से हमारे स्थानीय श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषीय बॉल बाय बॉल कमेंट्री का सीधा प्रसारण। वहीं हमारे मोबाइल ऐप से जुड़े श्रोता सुनेंगे विविध भारतीय कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 11:05 पर।

श्रोता देते थे हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी पात्रकरण सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। सुबह

6 बजे अपनिंग आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार चिंतन अपनिंग आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:05 पर वंदन अपनिंग 6:10 पर रामचरित मानस गाना अपनिंग 6:30 पर कार्यक्रम खेती की बात अपनिंग 6:45 पर आदिवासी लोक संगीत का एक अपनिंग 6:50 पर वातावरण अपनिंग 7:20 पर

विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8 बजे से। कार्यक्रम कुल्ली से आप सुनेंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। सुबह के 9 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 9:30 पर। सुबह के 11 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से सुगम संगीत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 5:05 हुए ही प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी लोक।

0: परिवर्तन से ही जीवन में नई बहार आती है, नई सोच से हर राह निखर जाती है, हौसलों से ही नारी आगे बढ़ती है, नई उम्मीद ही नई मंजिल तक ले जाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के नारी लोक कार्यक्रम का, तो कीजिए स्वीकार आपकी दोस्त प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार। मेरे जैसे के कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा करते हैं बातचीत से, तो आज की हमारी बातचीत का विषय है संपूर्ण टीकाकरण है बहुत जरूरी। इस विषय पर हमने बात की है हेमलता पंड्या से, जो गत 13 वर्षों से आंगनवाड़ी हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा में आशा सहयोगिनी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आइए सुनते हैं बातचीत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर माता पिता और हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। संपूर्ण टीकाकरण है बहुत जरूरी। टीके बच्चों को कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बहनों, आज हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए उपस्थित है हेमलता पंड्या, जो कि गत 13 वर्षों से आंगनवाड़ी हाउसिंग बोर्ड में आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत है। नमस्कार हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्ते प्रीति जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्ते।
0: तो हेमलता जी, आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले यह बताइए कि टीकाकरण क्या है और यह बच्चों के लिए क्यों जरूरी है।
1: जैसा कि आपने ये टीकाकरण के संबंधित बताया कि जानलेवा गंभीर बीमारियों से रक्षा करता है, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई है। तो ये हमारे भारत सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों की सुरक्षा और गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए चलाया जाता है, जो सभी आंगनवाड़ियों पर अनिवार्य रूप से हर महीने किया जाता है। तो ये बच्चों की सुरक्षा और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करवाया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे एवं बड़े नाजुक होते हैं।

0: हैं उनमें हम बड़ों की तरह इम्यूनिटी नहीं होती है, तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये टीकाकरण करवाया जाता है ताकि बच्चे अपने गंभीर और जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रह सकें।
1: हिमलता जी, अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा तो स्वस्थ है तो टीकाकरण हम बाद में भी करवा सकते हैं, तो ऐसा करना क्या सही है?
0: नहीं, देखिए, टीकाकरण बाद में करवाना या इसे अपन स्किप कर दे, ये बिल्कुल सही नहीं है। टीकाकरण हमें समय समय पर, जो बच्चे के जन्म से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक लगते हैं, संपूर्ण टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। ये बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चे सुरक्षित हैं तो अपना भविष्य भी सुरक्षित है और भारत देश का आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसको बिल्कुल ही स्किप ना करें, टीकाकरण अवश्य करवाएं।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब हिमलता जी ये बताइए कि संपूर्ण टीकाकरण से आपका क्या मतलब है?
0: जी प्रीति जी, संपूर्ण टीकाकरण होगा तभी हमारे टीकाकरण कार्यक्रम का मकसद पूरा होगा, और भारत सरकार द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें भी अपन को पूर्ण सफलता मिलेगी। तो आइए मैं बताती हूँ संपूर्ण टीकाकरण क्या है। तो बच्चे के माँ के कोख से ही वैसे उसकी सुरक्षा के लिए टीके लगाना शुरू हो जाता है। जैसे ही माँ गर्भवती होती है तो उसको अपने आंगनवाड़ी में जाकर के अपना पंजीकरण करवाना है, जिसमें अपने आधार, उनकी उम्र, शिक्षा इत्यादि जो भी वहाँ पर कार्यकर्ता मांगेंगी वो सारे उनको वहाँ लिखवा लेने हैं और अपना पंजीकरण पूर्ण करवाना है। पंजीकरण पूर्ण होने के बाद में ममता कार्ड दिया जाएगा, जिसमें वो सारे उनके टीके जो लगते हैं वो भी उसमें डेट नोट होती है, ताकि कितने टीके उनको लगे हैं, क्या है वो, उसमें सारी जानकारी दी जाती है। और बच्चे के टीके भी उसी ममता कार्ड में लगा करके डेट वाइज नोट होते हैं, ताकि कोई टीका छूटे ना और उसको पूर्ण रूप से टीकाकृत किया जाए। हाँ, टीकाकरण माँ के गर्भ से ही शुरू होता है, जिसमें 3 माह के अंदर अंदर गर्भवती होने के बाद में उनको टीडी फर्स्ट का टीका लगता है, और उसके 1 माह का गैप होता है 30 दिन का, और टीडी सेकेंड का टीका लगता है, और एक टीडी बूस्टर भी लगता है। जो अगर गर्भवती माँ के दूसरी बार गर्भवती है तो टीडी बूस्टर लगेगा, जिसमें 3 साल का अंतराल हुए बिना अगर पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर पहला उनको टीका जब कभी लगे हैं पहले और मिस कैरेज हो गया है और 3 साल के पहले फिर से प्रेग्नेंट है, तब भी टीडी बूस्टर का टीका ही लगाया जाएगा। ये तो माता के टीकाकरण से संबंधित जानकारी। अब बच्चे का इसके बाद जैसे हमको सरकारी या निजी हॉस्पिटल में ही प्रसव करवाना है, प्रसव किसी भी तरीके से घर पे करवाने की कोशिश नहीं करनी है। प्रसव हॉस्पिटल में होगा तो बच्चा और जच्चा दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद जन्म होते ही बच्चे को BCG का टीका लगाया जाता है, जो उसको TB नामक बीमारी से बचाता है, और यह बीमारी अपन सभी जानते कितनी खतरनाक है। तो बच्चे को जन्म होते 24 घंटे के अंदर BCG का टीका लगवाएं। इसके बाद हेपेटाइटिस बी 0 डोज लगाया जाता है, जो 24 घंटे के अंदर ही लगवाना होता है, तो वह टीका भी हमको वहां हॉस्पिटल में लग जाएगा। दूसरा OPV 2 बूंद जिंदगी पोलियो के लिए, जो लकवा नामक बीमारी से बचाता है, तो वो भी जरूर है। तो ये तो हो गए BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV पोलियो की हमारी जन्म होते ही खुराक। इसके बाद जैसे ही बच्चा 1.5 माह का होता है उसको हम पेंटा फर्स्ट का टीका लगाएंगे, जो 5 गंभीर बीमारियों से बचाता है, जैसे काली खांसी, डिफ्थेरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी ही, ये सारी ऐसी बीमारियों से पेंटा फर्स्ट का टीका जो 1.5 माह में लगता है, उसके साथ में एक IPV लगता है जो पोलियो रोग से बचाता है, वो अब इंजेक्शन में भी लगवाना शुरू कर दिया सरकार ने, और एक PCV लगाते हैं उसी के साथ में, जो न्यूमोनिया रोग से बचाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक रोटा वायरस की दवाई पिलाई जाती है जो दस्त रोग से बचाती है। तो यह तो हो गया 1.5 माह का टीका। इसके बाद में 2.5 माह के टीके में भी पेंटा सेकेंड, रोटा और ये पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती है। ये हो गया उसके 2.5 माह का टीका। इसके बाद में 3.5 माह का टीका फिर से पेंटा थर्ड का डोज होता है, और उसके साथ में IPV, PCV और रोटा और पोलियो की 2 बूंद। ये 3.5 माह तक के कंप्लीट हुए। इसके बाद में बच्चा जैसे अपना 9 महीने कंप्लीट कर लेता है, 9 महीने के पूर्ण होने के बाद में 10वां महीना लगता है, तब मिजल्स का टीका लगता है, जिसे MR फर्स्ट भी बोलते हैं, और यह टीका खसरा और रूबेला नामक रोग से बचाता है, जो ये खसरा बहुत ही प्राण घातक है तो

0: ये टीका भी लगवाना बहुत ही अनिवार्य है 9 माह के अंदर। इसके साथ में विटामिन ए की दवाई भी पिलाई जाती है जो उसको मानसिक रूप से समृद्ध करती है, तो विटामिन ए भी पिलाएं। और इसके बाद में 16 महीने के अंदर से 24 माह के बीच में एक टीका डीपीटी बूस्टर का लगता है जो खांसी, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस से बचाता है, तो ये टीके अवश्य लगाएं। उसके साथ में भी विटामिन ए की दवाई पिलाई जाती है जो सेकेंड डोज होता है। वैसे बच्चे को पूरे 9 माह से लेकर के 5 वर्ष तक विटामिन ए की टोटल 9 खुराकें दी जाती है और वो हर खुराक के बीच में 6 माह का अंतराल होता है, तो उस 6 माह के अंतराल में सारी 9 खुराकें विटामिन ए की भी बच्चे को अवश्य दिलवाएं और वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर आपको आसानी से मिल जाएंगी, टीकाकरण हो जाएगा। ममता कार्ड लेकिन अवश्य ले जाएं अपना और उसी में सारे संपूर्ण टीकाकरण नोट किए जाते हैं और उसका पूरा वहाँ पे लेखा जोखा आंगनवाड़ी में भी रखा जाता है। इसके बाद जो टीका होता है वो 5 वर्ष का टीका डीपीटी बूस्टर का लगता है, वह लगवाएं। इसके बाद 10 साल के अंदर टीकाकरण होता है वो डीपीटी बूस्टर का लगता है, वह लगवाएं। इसके बाद 16 वर्ष के अंदर एक टीका लगता है डीपीटी बूस्टर, उसको भी लगवाएं। यह सारे ही टीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह 0 से लेकर 16 वर्ष तक संपूर्ण टीके लगवाएंगे तभी अपना टीकाकरण पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा, एक भी टीका इसमें छूटना नहीं चाहिए।
1: जी आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी टीकाकरण के बारे में। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माना किसी बच्चे के टीकाकरण की जो खुराक है बीच में छूट गई है तो क्या उसे फिर से पूरा टीकाकरण करवाना पड़ेगा?
0: नहीं, देखिए प्रीति जी, अगर किसी बच्चे का टीका जहाँ से छूटा है, पहले जो लग गए हैं वो तो लग गए, उसको वापस नहीं लगेंगे, पर जहाँ से छूटे हैं ना वहाँ से आगे उसके जितने भी 16 वर्ष के टीके हैं वो पूर्ण लगवाने हैं। छूट गया है तो कोई डरने की बात नहीं है, अपने डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, आंगनवाड़ी आशा बहन से मिलिए और जहाँ से छूटे हैं वो अपना कार्ड में लिखा हुआ तो होगा ही सही और उससे आगे वाले टीके लगवा लीजिए।
1: हेमलता जी, अक्सर देखा गया है कि टीकाकरण के बाद बच्चों को दर्द और बुखार होता है, तो ऐसे में माता पिता बहुत घबराते हैं, तो इस समय उन्हें क्या करना चाहिए?
0: नहीं, उस समय ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो, टीका अगर अच्छे से लगा है तो उसको थोड़ा सा बुखार आने के संभावना होती है, तो वो इसका मतलब टीका उसको सही लगा है, तो टीका लगवाने के बाद बुखार आए या कोई हल्की सी सूजन है तो यह 1-2 दिन रहती है, नॉर्मल बात है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगा तो डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के उसमें पैरासीटामोल भी अपन बच्चे को दे सकते हैं बुखार उतारने की, और पांव में अगर सूजन है तो बर्फ की सेकाई करें, कपड़े में बर्फ को लपेट कर हल्के हल्के हाथों से जहां टीका लगा है वहां पैरों पे सिकाई कर लें ताकि बच्चे को आराम लगे और 2 दिन में अपने आप ही वो बुखार भी उतर जाएगा और वो सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन टीका अपना अवश्य लगवाएं।
1: जी हेमलता जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को टीकाकरण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश सभी माता पिताओं को यही है कि आप अगर अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उसके लिए खुशी के लिए खिलौने लाते हैं, पढ़ाई के लिए किताबें लाते हैं, कपड़े लाते हैं, इसी तरह से अगर बच्चा ये सब ला रहे हो लेकिन वो अस्वस्थ है तो इसका महत्व नहीं रहेगा, तो उसको स्वस्थ रहे इसके लिए सबसे पहले टीकाकरण इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ये सारी वस्तुएं उसके लिए आती और वो सुरक्षित, तो अपने मोहल्ले सुरक्षित, समाज सुरक्षित और अपना देश सुरक्षित, क्योंकि बच्चे ही आने वाले भविष्य की तस्वीर है, तो वो स्वस्थ होंगे तो भारत भी मजबूत बनेगा।
1: जी हेमलता जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आशा करती हूँ कि वे इसका लाभ जरूर ले पाएंगी, और इसी के साथ आप आए कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते, धन्यवाद।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना

0: से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बात करते हैं विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, जो कि कल यानी 12 सितंबर को मनाया जाएगा। यह दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में दुर्घटनाओं, आपदाओं के दौरान जीवन बचाने वाले प्राथमिक चिकित्सा कौशल के महत्व और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज द्वारा की गई थी। इसमें CPR, दम घुटने की स्थिति से निपटना, पट्टियां बांधना और घाव की देखभाल करना मुख्य कौशल होता है। अब दोनों चर्चा को हम आगे जारी रखें, इससे पहले चलते हैं गीत संगीत की और सुन लेते हैं प्यारा सा गीत।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना

0: अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: मैं फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब बात करते हैं विनोबा भावे जयंती की, जो 11 सितंबर को महान गांधीवादी समाज सुधारक और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गांगोड़ी गांव में हुआ था। विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज और सामाजिक समानता का संदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बिना हिंसा और बिना भेदभाव के भी समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। ये तो विनोबा भावे के बारे में बातचीत। अब सुनते हैं कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो वो भी 11 सितंबर को ही मनाया जाता है, यह दिन उन वीर वन कर्मियों और पर्यावरण रक्षकों को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने जंगलों, वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह दिवस हमें राजस्थान में खेजल्ली बलिदान की याद दिलाता है, जहां अमृता देवी बिश्नोई और उनके अनेक लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। मैंने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही समय के साथ बड़ा परिवर्तन लाती। हर दिन थोड़ा व्यायाम, स्वस्थ भोजन करना, समय का सही उपयोग करना, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना, परिवार के साथ समय बिताना और सकारात्मक सोच रखना, ये छोटे कदम हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए बदलाव के लिए कल का इंतजार न करें, आज एक अच्छी आदत अपनाएं और इसे लगातार जारी रखें। याद रखिए, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो यह थी चर्चा। और फिर चलते चलते सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी लोक एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

1942 आई लव स्टोरी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत जावेद अख्तर का था और संगीत आर डी बर्मन का।

हल्के अग्निकौर कुमार सानू की आवाज सुनी। अभी आपने सुना बासी खर फिल्म का गीत। नवाब आरजू के बोलों को संगीत से संवारा था अनु मलिक ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से।

कोयला फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ गीत इंदिवर का था और संगीत राजेश रोशन का।

कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत इब्राहिम अश्क का था और संगीत राजेश रोशन का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमी चैनल है। कार्यक्रम रूपरेखा में लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

शाम 7 बजे ग्राम भारती कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे जतन सिंह गुर्जर की एक वार्ता फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे लोकगीत, बाजार भाव और मौसम का हाल।

शाम 7:30 बजे से आप सुनेंगे एशिया कप महिला T20 क्रिकेट मैच के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
1: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
2: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना

0: ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

मुकेश लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना शोर फिल्म का गीत गीत संतोष आनंद का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सौतन फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार के बोलों को संगीत से संवारा था उषा खन्ना ने।

मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना अनाड़ी फिल्म का गीत। गीत शैलेंद्र का था और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में, दुनिया के कई प्रमुख नेता पहुंचे। देश में आज से फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा की शुरुआत और राज्य के कुछ हिस्सों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत, कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले संपन्न हुआ। 147 निकायों में शाम 5 बजे तक लगभग 68% वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ परिसर में प्रवेश करने वालों के लिए जारी रहा। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं के लिए मतदान हुआ। शहरों की सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया। दोपहर 3 बजे तक बाड़मेर के धोरीमन्ना में 85% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। वहीं उदयपुर के मावली में 80% वोट डाले गए। बाड़मेर के चौहटन में 78% मतदान दर्ज हुआ। प्रमुख नगर निगमों में दोपहर 3 बजे सबसे कम अजमेर में करीब 48% वोट डाले गए। मातृशक्ति और युवा शक्ति, नव मतदाता तथा बुजुर्गों सहित हर आयु वर्ग में मतदान को लेकर जोश देखा गया। लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी के बाद मतदाताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: पिंगाड़ा नगर पालिका चुनाव में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह उठ के मैं सीधा यही आगे रेडी होकर के नाश्ता भी नहीं किया और मेरे को बहुत खुशी है कि लोकतंत्र में मेरा कहीं पे योगदान रहेगा।
2: मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, वोट देकर मेरा अधिकार है और मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, आप इससे वंचित न रहिए।
3: मेरा नाम निशा है, मैंने आज मतदान किया है। सभी को इस मतदान में भाग लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी से हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि वे महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं बनाए और सभी गांव में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए।
0: निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को जनता के हित में बताया।
4: राजस्थान को विकसित बनाने का, निकाय को विकसित बनाने का हमारा दायित्व होता है। हमारा वो संकल्प वन स्टेट वन इलेक्शन वो हमने पूरा किया है और राजस्थान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान निश्चित रूप से जनता सुखद महसूस कर रही है कि हमारे 2 महीने के अंदर हमारे चुनाव हो जाएंगे और फिर आराम से राजस्थान की जनता के विकास के कार्य होंगे।
0: दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही 18,266 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। 162 निकायों में हुए पहले चरण में मतदान प्रतिशत 76.41 रहा। कुल 309 निकायों में हुए इन चुनाव के लिए 38,929 उम्मीदवार मैदान में हैं। 76 वार्डो में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होने की उम्मीद जताई। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में आयोजित होने वाले 2 दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर होंगी। भारत मंडपम में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखा गया है। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान, ईरान के राष्ट्रपति

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी।
1: मुख्य समाचार।

0: मसूद पेजिश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज दोपहर में नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुसार नहीं है। उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए समर्थन दोहराया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। इनका सबसे ज्यादा असर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, किंतु भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अड़िग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके तहत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकेंड से कम करना है। उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।
1: देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। ये आप सबको आह्वान किया है कि इसका आगे फ्यूचरिस्टिक डिजिटल रिसर्च करके इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके रिकमेंडेशन सजेशन हमको दीजिए, हम उसमें पूरी तरह आपको सहयोग करेंगे। मेरा मानना है कि भविष्य का हाईवे केवल एक फिजिकल रोड नहीं होगा, वो डिजिटल हाईवे है। और इसलिए आपको ये अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि हम क्या क्या करने से लोगों के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री बना सकते हैं।
0: सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला कल से शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस मेले के लिए श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि मेले में साफ सफाई पर विशेष जोर रहेगा। मेले को पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल सामग्री से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने सभी मेलार्थियों से स्वच्छता को लेकर सहयोग करने की अपील की है।
2: श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जहाँ भी हमें लाइटिंग की, बैरिकेडिंग की, टॉयलेट की, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी की, वो सारी सुविधाएं जिन्हें जिला प्रशासन की गई है। इस बार हमने आग्रह किया प्लास्टिक मुक्त इस मेले को रखने में अपना सहयोग दे, प्लास्टिक का यूज नहीं करे। इसमें जितने भी भंडारे लगे उसमें जो भंडारे सुरक्षा के सारे नियम पालन करेंगे तो मिल जुलकर इस जो मेले को स्वस्थ रखे, साफ सुथरा रखे, क्योंकि इस दौरान भारी बारिश की भी चेतावनी है। हमने श्रद्धालुओं से ये भी आग्रह किया कि आप कोई नदी नाले जिसमें जल का बहाव हो रहा हो उसको क्रॉस नहीं करें, क्योंकि पहाड़ों से या जंगल से पानी बहुत तेजी से आता है। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं, हमने सभी नाले या गंगे हैं उनके आसपास पर्याप्त जागरूकता और हमारे वॉलंटियर्स की मदद है।
0: राज्य में मानसूनी गतिविधियों का दौर एक बार फिर आज से सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम ने मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। इसके असर से पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कहीं

तेज बारिश भी हो सकती है। बारिश का ये दौर 15 सितंबर तक जारी रहने के आसार हैं। कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज दोपहर बाद भरतपुर में घनघोर घटाएं छा गई और 1.5 घंटे तक झमाझम बरसात हुई। बारा में भी दोपहर बाद कुछ देर जोरदार पानी बरसा। राजधानी जयपुर में भी अब से कुछ देर पहले बरसात का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि मौसम के इस बदलाव से पहले अधिकतर स्थानों पर उमस भरी गर्मी बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 से ज्यादा स्थानों पर दिन का तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा जा रहा है। पिलानी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। वहीं श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू सहित अन्य स्थानों पर दिन का तापमान 37 डिग्री के पास पहुंचने से उमस और गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का पूर्वानुमान बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। भारत की अध्यक्षता और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। दुनिया के कई प्रमुख नेता पहुंचे। देश में आज से फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा की शुरुआत। और राज्य के कुछ हिस्सों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने से उमस भरी गर्मी से राहत। कल 29 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। जिले की चिट्ठी की शुरुआत नगरीय निकाय चुनाव की खबरों के साथ। जिले में 11 स्थानीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में कराए गए। पहले चरण में चूरू, सुजानगढ़, रतननगर, राजगढ़ और छापर में मतदान हुआ। इन 5 निकायों के 205 वार्डों के लिए 276 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान में 1,86,004 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजगढ़ नगर पालिका में सबसे अधिक 77.98% मतदान हुआ, जबकि सुजानगढ़ में 68.91% यानी सबसे कम मतदान हुआ। चूरू में 72.81, रतननगर में 75.99 और छापर में 75.04% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के वोट 9 सितंबर को डाले गए। दूसरे चरण में आज तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़, साहवा और बीदासर सहित अन्य निकायों में मतदान हुआ। जिले के कुल 450 वार्डों के लिए 1,545 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव कार्यालय बनाए, जहां समर्थकों की आवाजाही रही। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं की। आचार संहिता लागू होने के बाद उसके पालन पर भी ध्यान दिया गया। अब चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी है। जिले की 11 निकायों के चुनाव की मतगणना 14 सितंबर को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि चूरू की मतगणना केंद्रीय विद्यालय में 14 टेबलों पर 8 राउंड में होगी। सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या कॉलेज, छापर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदार शहर में SBD कॉलेज और तारानगर में जालपा देवी कॉलेज में मतगणना होगी। सहावा में मोहिनी देवी चाचाण कॉलेज, रतनगढ़ में केशरी देवी लोहिया कन्या कॉलेज, राजल देसर में राजकीय कॉलेज और बीरासर में ज्ञान ज्योति उमा शिक्षण संस्थान में मतगणना की व्यवस्था की गई है। इस बार मॉनसून की बारिश औसत से कुछ कम रही। बारिश की कमी के कारण खेतों में खड़ी फसल के पत्ते पीले पड़ने लगे थे और किसान चिंतित नजर आए। बीते सप्ताह जिले में जोरदार बारिश हुई, इसके बाद खेतों में फसल फिर से हरी होने लगी है। बारिश से फसलों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लोक देवता गोगा जी की जन्म जयंती पर चूरू की मुख्य गोगा मेड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। परंपरा के अनुसार विभिन्न गोगा मेड़ियों से निशान यात्राएं

0: ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य मेड़ी पहुंची। करीब 35 निशानों के साथ श्रद्धालुओं ने मुख्य मेड़ी में ढोक लगाई। श्रद्धालु नाचते गाते और गोगा जी के जयकारे लगाते हुए पहुंचे। मेले में दूर दराज से आए दुकानदारों ने विभिन्न वस्तुओं की दुकानें लगाई, झूले भी लगाए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जल सेवा की गई। इसके अलावा मेला स्थल पर एम्बुलेंस तैनात रही और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। चूरू में ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। संत निवृत्त नाथ जी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस तरह की ई लाइब्रेरी उपयोगी है। लाइब्रेरी में पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चूरू के लोहिया कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ की ओर से रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाया गया है। ये केंद्र कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। सुजानगढ़ नगर पालिका में घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू की गई है। पालिका प्रशासन ने शहर से करीब 35,000 घरों का सर्वे किया है। इसके बाद 30 गाड़ियों के माध्यम से घर घर से कचरा उठाने का काम शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था से घरों के आसपास जमा कचरे से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। घड़ाऊ गांव निवासी भारतीय सेना के 91 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक राजेश चौहान बीते दिनों वीर गति को प्राप्त हुए। उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके सम्मान में गांव में तिरंगा रैली निकाली गई। चूरू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर और पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर में आज शांति सागे वोट पड़िया। वोटारी गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। भारत री सदारत और मेजबानी माय 18वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काल नई दिल्ली माय शुरू हैला। दुनिया रा कई खास नेता दिल्ली पुग्या। देश माय आज फास्ट टैग पोर्टेबिलिटी शुरू, वन टैग सुबितो शुरू भियो। और प्रदेश रा कुछ हलका माय चौमासारी बिरखा ओजू शुरू हुई। काल 29 जिला माय बरसात रो येलो अलर्ट। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश माय नगरीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रा चुनाव माय वोट देवन रो काम अब थोड़ी देर पहले पूरो हो गयो। इन तेत 147 निकाया माय सिंजा 5 बजे ताई करीब 68% वोट पड़िया। सवारे 7 बजे शुरू हुयो वोट देवन रो सिलसिलो, सिंजा 6 बजे ताई मतदान केंद्र माय दाखिल हो जावन वाला शुरू चालतो रहयो। ई दौर माय 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं रा चुनाव शुरू वोट पड़िया। शहरारी सरकार रा चुनाव शुरू वोट देवन वाला माय खास उमाव नीचे रहयो। दोपहर 5-3 बजे ताई बाड़मेर जिला रा धोरी मन्ना माय 85% बत्ता वोट पड़ गया है। दोपहर 5-3 बजे ताई उदयपुर जिला रा मावली माय 80%, जबकि बाड़मेर जिला रा चौहटन माय 78% वोट पड़ गया है। खास नगर निगम माय शामिल अजमेर माय दोपहर 3 बजे ताई सबो कम करीब 48% वोट पड़िया। महिलावा वोट देवन वाला नुआ लोगा और बुजुर्गा समेत हर उम्र रा लोगा माय वोट देवन रो उमाव निचर आयो।
2: पिंगाड़ा नगर पालिका चुनाव में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ और इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह उठ के मैं सीधा यही आगे रेडियो करके नाश्ता भी नहीं किया और मेरे को बहुत खुशी है कि लोकतंत्र में मेरा कहीं पे योगदान रहेगा।
3: मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। वोट देकर मेरा अधिकार है और मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, आप इससे वंचित न रहिए।
4: मेरा नाम निशा है, मैंने आज मतदान किया है। सभी को इस मतदान में भाग लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी से हम ये उम्मीद रखना चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं बनाएं और सभी गांव में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं स्थापित करें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जाए।
1: निकाय चुनाव रा दूजा और आखिरी दौर माए आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माए जगतपुरा हलका रा एक मतदान केंद्र माए वोट तीनों। ई पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत

0: करता था का वह एक राज्य एक चुनाव री सोच ने जनता रो भलो करण वाली बताई। दूजा दौर रो मतदान पूरो फिर वनसा गई। 18,266 उम्मीदवारा रो सियासी भाग ईवीएम आए बंद वे गयो। 9 सितंबर ने व्या पहला दौर रातेत 162 स्थानीय निकायां माए 76.41% वोट पड़िया हा। कुल 309 निकायां माए चुनाव सारू 38,929 उम्मीदवार चुनाव मैदान माए है। 76 वार्डा माए उम्मीदवार बिना चुनाव सगा री एक राय चुनी चिया। वोटारी गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए भारत री सदारतर मेजबानी माए काल नई दिल्ली माए शुरू फेरिया। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन माए 11 मुद्दा माथे सकारात्मक और सार्थक चर्चा फेवन री उम्मीद जताई है। शिखर सम्मेलन माए ब्राजील चीन मिस्र इथोपिया इंडोनेशिया भारत ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 खास उभरती और विकासशील माली व्यवस्था वाला नेता एक सग विचार करेला। नई दिल्ली रा भारत मंडपम माए फेवन वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रो मुद्दों लचीलापन नवाचार सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण राखी चियो है। शिखर सम्मेलन में रूस रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन रा राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका रा राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मिस्र रा राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ईरान रा राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी रा युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत दुनिया रा कई नेता शामिल फैला। इथियोपिया रा प्रधानमंत्री आबी अहमद अली ने सम्मेलन में भाग लेवेला। इबीच प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर पाछे नई दिल्ली में रूस रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सागे बातचीत कीनी। प्रधानमंत्री मोदी रो आज संजा ईरान रा राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सागे बातचीत करन रो कार्यक्रम है। इबीच ब्रिक्स देशाना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक रा गवर्नर रे मुंबई में भी मीटिंग में टैरिफ और गैर टैरिफ अड़चना समेत एक तरफा कारोबार और माली उपाय लागू करने में गंभीर चिंता जताई ची। सदस्य देश WTO ने ध्यान रखता था का स्वतंत्र पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था री हिमायत दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि आतंकवाद रो बदलता रूप में खतरो लगातार बढ़ रियो है पर भारत रो इनरा सगला रूपों के खिलाफ लड़ाई रो संकल्प अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 ने भया आतंकवादी हमला री 25वीं बरसी रे मौके सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि आतंकवाद आखी दुनिया में अनगिनत लोगों ने जान लेनी है। वह कहो कि सरहद पार हो आतंकवाद री जद में आयो भारत दशकों इनरे खिलाफ लड़ाई में आगे रहो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मुंबई में फास्ट टैग पोर्टेबिलिटी सारू वन टैग सुविधा री शुरुआत कीनी। इन तेत गाड़ी रो मालिक मौजूदा फास्ट टैग ने राजमार्ग यात्रा ऐप जरिए नुआ बैंक खाता जोड़ सके है। ई मौके गडकरी कहो कि टूल प्लाजा माथे इंतजार 10 सेकंड नु कम करनो पड़े। सरकार चालू माली साल रा आखिर ताई एड़ी व्यवस्था माथे खास ध्यान दे रही है। वे बतायो कि देश भर माए हाल ताई 13 करोड़ उम्बत्ता फास्ट टैग जारी कर दिया चिया है।
1: देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक फास्ट टैग जारी किए जा चुके हैं। ये आप सबको आह्वान किया है कि इसका आगे फ्यूचरिस्टिक डिजिटल रिसर्च करके इसका और क्या क्या उपयोग हो सकता है इसके रिकमेंडेशन सजेशन हमको दीजिए, हम उसमें पूरी तरह आपको सहयोग करेंगे। मेरा मानना है कि भविष्य का हाईवे केवल एक फिजिकल रोड नहीं होगा, वो डिजिटल हाईवे है।

0: और इसलिए आपको ये अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि हम क्या क्या करने से लोगों के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री बना सकते हैं।
1: सवाई माधोपुर जिला में रणथंभौर रो नामी त्रिनेत्र गणेश मेलो काल शुरू फैला। तीन दिन रा ई मेला में यात्रुओं री मोटी तादाद में आमद रफ्त रा आसार न ध्यान रखता थका पुलिस प्रशासन री ओर पुख्ता बंदोबस्त करी चिया है। जिला कलेक्टर कानाराम बतायो कि मेला में साफ सफाई माथे खास ध्यान दियो जावेला और सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजेबल सामग्री काम नहीं ली जा सकेला।
2: मतदानों की सुरक्षा को लेकर जहाँ भी हमें लाइटिंग की, बैरिकेडिंग की, टॉयलेट की, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज की, वो सारी सुविधाएं जो है जिला प्रशासन की दी है। इस बार हमने आग्रह किया प्लास्टिक मुक्त इस मेले को रखने में अपना सहयोग दे, प्लास्टिक का यूज नहीं करे। इसमें जितनी भी भंडारी लगी है उसमें जो भंडारी स्वच्छता के कारण मैं पालन करेंगे तो मिलजुल कर इस जो है मेले को स्वच्छ रखे, साफ सुथरा रखे, क्योंकि इस दौरान भारी बारिश की भी चेतावनी है। हमने सचिवालय से ये भी आग्रह किया कि आप कोई नदी नाले जिसमें जल का बहाव हो रहा हो उसको क्रॉस नहीं करें, क्योंकि पहाड़ों से या जंगल से पानी बहुत तेजी से आता है। ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं है, हमने सभी नाले या गड्ढे हैं उनके आसपास पर्याप्त जाप्ता और हमारे वॉलंटियर्स भी लगाएंगे।
1: अरब मौसम राज्य में चौमासारी बिरखा बेगी उजु स्वरूप बन रहा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश रा उगनी और लंकाऊ हल्का माई कठे कठे बिरखा फै सके है। बारिश रो ओ सिलसिलो 15 सितंबर तक चाल तो रे वन री संभावना है। काल 29 जिला माई बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। इविचे आज दोपहर पाछे भरतपुर माई 1.5 घंटा तक झमाझम में बरसियो। 12 माई दोपहर पाछे थोड़ी देर तक जोरदार बिरखा फी। राजधानी जयपुर में कठे कठे छंटू छिड़को फियो। लारला 3-4 दिन में बिरखा नी वेवणु पारो चढ़वा लाग्यो हो। पिलानी माई पारो 40 डिग्री सेल्सियस तक पूग गयो। 10-32 ठोड़ा अधिकतम तापमान 36-39 डिग्री सेल्सियस बीच चल रियो है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू समेत कई ठोड़ा पारो 37 डिग्री सेल्सियस कने पूग गयो। मौसम विभाग आवता 2 सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य ऊंचो रहवन रा आसार जताया है। मालोत्रा जिला में गुढ़ामला ने रतनपुरा गेला माथा एक कार और गाड़ी री आमी सामी रे टक्कर रे कारण कार में सवार एक ही परिवार री 2 महिलाओं री मौके ही मौत वेगी, जबकि 5 जना जख्मी फेंक्या। जोधपुर जिला में शेरगढ़ कने भूंगरा मेगा हाईवे माथे बीती रात पैदल रामदेवरा जा रहा यात्रुओं रे एक बेकाबू कार री फेंट में आ जावन 3 यात्रुओं री मौत वेगी। शेरगढ़ रा थानाधिकारी बतायो कि ये लोग नाथासर गांव रा रहवासी हा। राजधानी जयपुर रा करधनी हल्का में एक मकान एक महिला और 3 टाबनिया री लाशा बरामद करी जी। जयपुर पश्चिम रा पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण बतायो कि शुरुआती जांच में परिवार रा मुखिया कानियो आ वारदात करण री जानकारी मिली है। पुलिस मामला री जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। इसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 माथे 25 सितंबर तक राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर में आज शांति सागे वोट पड़िया। वोटा की गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। भारत री सदारत और मेजबानी में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काल नई दिल्ली में शुरू भेला। देश में आज फास्टैग पोर्टेबिलिटी शुरू वन टैग सुबितो शुरू भियो। प्रदेश का कुछ हल्का में चौमासारी बिरखा ओजू शुरू भी। काल 29 जिला में बरसात रो येलो अलर्ट। सागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
3: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थानी प्रादेशिक समाचार FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है चौपाल कार्यक्रम।

0: चौपाल कार्यक्रम हमारा सब किसान भाई बने धर्मिष्ठानो राम राम राम राम। देखो भाई बने सब खेती बाड़ी नो काम काज करवा लगे तक पास त्योहार आ रहे जाई रहे ने इनो आनंद भी मना भी रहता कहा पर मन किसान भाइयों ने थोड़ा दुखी भी थी रू है क्योंकि देखो मेघ बाबा नी मर्जी थी नहीं हजी नहीं आप वाट जो रहता कहा क्योंकि खेती बाड़ी स्वाड जो रही है क्योंकि देखो अपने जी भी खरीफ में फसल वगैरह कर रखी है तो इनमें अपने सिंचाई करनी जरूरी थी गई है क्योंकि अपने दूधी अवस्था है तो आज मक्की वगैरह सोयाबीन वगैरह में तो अपने पानी की खूब जरूरत है पर हम पानी पड़े तारे मन में एम थाय भाई जूत पानी पड़ी गयु है पर कई नहीं देखो मेघ बाबा मर्जी तो थी जाएगा पर आपने मन दुखी नहीं करवो केम के देखो आपे तेरा खेती बाड़ी करवा वाला किसान भाई बहने तो हमेशा आपने आनी बात नु ध्यान रखो भाई कोई भी काम में अपने देखो कई कई न को नुकसान तो सालतो रहे पर इन हाथे हाथे अपने जी अनाज वाली फसल हाथे शाक सब्जी वालू काम भी खूब करी रहता काम शाक सब्जी वालू काम एवं है कि 12 महीने बतरी घड़ी सालवा वालू है तो इन्हें अनुसार अपने भाई कई फसल वगैरह अनाज वगैरह में अपने फायदा नहीं थाय तो नुकसान था इन नुकसान की भरपाई अपने शाक सब्जी वगैरह कर इनमें आप पूरु कर सको। देखो ये तो मन है आपने खरीफ की फसल तो एक तरह की जुओ इनको कि आप भाई पानी कई बार पड़ी भी जाए कई बार नहीं भी पड़े खूब पड़ी भी जाए तेरी अपने एम लगे कि भाई खरीफ की फसल मलेगी तो मलेगी नहीं मिले तो नहीं भी मिले क्योंकि देखो पौर तो अपने कितने भाई खेतर खाली पड़े तो क्योंकि पेरवा बराबर नहीं मिले अपने ने ओण हजी अपने सब भाई ने खेतर भी पेराई भी गए अच्छे मतलब उगी भी आयु है पर अपने है कि भाई कई कई जगह मत पानी पड़ी गयु कई नहीं पड़ू थी वाट जो रहता कहीं ने घड़ा भाई ने भाई सिंचाई नी की सुविधा हुआ तो सिंचाई ने अनुसार के पानी वगैरह पाई दीधु है तो खेती बाड़ी बढ़िया भी है साली रीते की है पर आप बात है कि भाई कोई भी काम में अपने कोई जल्दबाजी नहीं करे अपने मन दुखी नहीं करे क्योंकि जल्दबाजी करवा जाएंगे तो भी नुकसान है अपने तुम दू की पानी लाई पाई दीधु ने फिर के ऊपर देखिए पानी आ गयु तो ये बमू थी जाते अपने नुकसान थी सके अपने भी संभावना अनुसार ने आजकल देखो डिजिटल इंडियन जमाना है मौसम जानकारी अपने मिली जाए कि भाई आ बे दाड़ा चार दाड़ा पानी पड़े पड़वा नहीं पड़ेगा तो इन भी अपने जानकारी मिली जाए कई के भी रहेगा भाई जी कई नहीं था पर अपने इन अनुसार हर तरह काम अपने करव है क्योंकि हर टेम टेम मत आप आना कार्यक्रम माध्यम थी कही सको कि जे भी अपने खेती बाड़ी नु काम है फसल चक्र ने अनुसार समय ने अनुसार थी जाए तो बढ़िया रहेगा जितलू आप एनी बात नु ध्यान रखेंगा एटलू बढ़िया रहेगा क्योंकि अवड़े आ खरीफ की फसल में सोयाबीन करिए धान की फसल है साग सब्जी वगैरह खूब कर रखी है मक्की वगैरह है मतलब हर तरह की कोई न कोई किसान भाई क्या काम थे कि जुड़े तक हिंस खरी ने साग सब्जी की बात करो भाई साग सब्जी वालू काम है 12 महीने बतरी घड़ी सालवा वालू है तो अपने हर तरह की कोई रोप थकी तैयार कर रू है कोई बीज लाइव तैयार कर रू है कई सब्जी कोई हूँ लगाड़ी कोई हूँ लगाड़ी रू है ने अपने आ सब्जी वालू है कि भाई हर सीजन में कोई भी सब्जी थी सके तो अपने बे जो आप काम है रोज न घर न खर्चा वगैरह ही ये आनती की आप कर सको एने हाथ आप पशुधन वगैरह भी राखी रहे गाय भेज बकरी वगैरह तो इन तीकी भी अपनी आय बड़ी रीते की है पर अपने हर तरह की इन ध्यान में रखूंगा तो बढ़िया रहेगा पर इन हाथे देखो आ बातचीत में बात करी भी से काम भी करे तो कहें पर अपने आना कार्यक्रम में कई कई तो की बात भी करो कर भाई कोई बोने की भी करो कि भाई ये खेती बाड़ी काम हरते करी रीते की तो इन तक अपने जानकारी भी लो ने बातचीत भी करो तो इनमें भी अपन लगे ना भाई भी आना तरीके तक करिए तो आप भी करूंगा तो बढ़िया रहेगा ने आजकल देखो खेती बाड़ी में भाई तो खूब काम करे पर इन हाथे बोने भी खूब काम करी रही तो बहनों ने भी अपने खेती बाड़ी में खूब महत्वपूर्ण भूमिका है इनमें देखो बहने तो हर तरह की घर न परिवार नो व्यवहार सब तरह की जानकारी रखी रही थी कि करी रही थी कि आज आ गीता दीजी तक की बात थी थी तो पहले आपने इनने तक की बात हमरो ने पसागढ़ी बात करना थोड़ा संदेश भी आई पड़े तो ये भी हमरो ना ने पसागढ़ी बात करो।
1: राम राम।
0: तुम्हारा नाम हुए
1: गीता।
0: गीता कया गाम नो
1: उटिया पान।
0: उटिया पान के

आपन जी फसल में भी तो कोई लगवान संभव न रहे तो आसपास साग सब्जी वगैरह खूब करे रखी थे किए तो सब्जी में कोई कीट वगैरह थी जाए तो इन्हें नियंत्रण में भी बात करत भाई सब्जी में भी कोई कीट प्रभावी नियंत्रण बल ले जैविक उपाय नु करव जरूरी है क्योंकि रासायनिक कीटनाशक तो सांस्कृतिक तरीका थी कि आपने गलत थी सके तो समय ने माते आपने सिंचाई करव साफ करव मिलो जुलो उपयोग करव एम थी कि अच्छो रहे क्योंकि जितलो भी आपने साफ सफाई नु ध्यान रखूंगा खतपतवार नियंत्रण रखूंगा क्योंकि लगातार आमने दिन आप खातर वगैरह नकी रहे सिंचाई वगैरह थी रही है तो इन कारण खरपतवार जंगली पौधा वगैरह उगी जाए तो जी आप खाद वगैरह नाखो तो एम थी पोषक तत्व जीव आप फसल में मल्वा जुए एवं ने मले भाई जी जंगली पौधा वगैरह है ये उगी जाएगा तेन थी रहेगा नुकसान हे भाई आप कोई मेन जी फसल है तो देखाएगा नहीं जंगली पौधा वगैरह देखाई आजकल आप खेतर वगैरह में जाओ तो सार देखा अपने खबर नहीं पड़ती सोयाबीन है कि मक्की है कि घसार है एट्ले अनुसार अपने साफ सफाई नु भी ध्यान रखते थे कि खातर वगैरह भी टेम टेम करे सिंचाई भी टेम टेम मत करेगा तो इन ध्यान रहेगा तो अपने खबर पड़ेगा कि भाई अच्छू है ने कोई भी पौधा वगैरह अपने लगाड़ी कहा ती भी भाई भाई रोप वगैरह करो तैयार तो भी ठीक है ने कोई बीज लावी ने भी घना किसान भाई साग सब्जी नु बीज वगैरह लावी ने भी बुआई वगैरह तैयारी करे तो हर तरह थे कि अपने ध्यान रखव जरूरी है खुद जी सब्जी मे जी प्रमुख कीट रही एनो भी अपने बात करते पर रस चूसवा वाला जी कीट जिन्हें चेपा है तेला है सफेद मक्खी है थिप्ती है आ ही छोटा तरह ना कीड़ा रहे जे रस चूसी ने जी फसल है इनने अपने कमजोर करी जे तो इन उपाय बल्ले शुरुआती रोकथाम बल्ले कोल्ड विक्स नीम नु ऑयल तेल आए इन छिड़काव कर अपने नॉर्मल तरीके आट तक बसाव कर सकिए गंभीर प्रकोप होना कोरोमंडल इन्वेक्ट कर प्रयोग करवा थी आना जी आ कीट वगैरह एनु भी रोग नो रोकथाम थी सके बीजो है झिल्ली और फला तना छेदक कीट वगैरह की भी बात करो तो आ भी कीट की पत्ती ने फलों ने काटी ने खाई जाए जिंदगी की फसल हड़वा लगे एटले एनु भी अपने खास ध्यान रखू है कि जे आ कोई तरह लगे कि भाई पत्ती वगैरह छेद वगैरह थी रू नुकसान थी रू तो जैव कीटनाशक नो प्रयोग कर खेत में पीरो चीपचीपो जाल लगाड़ी ने एने कीट की संख्या ने कम थी सके तो कुछ एवं जैविक रासायनिक वगैरह जो कीट वगैरह नो बसाव नो अपने तरीको है इनो भी अपने ध्यान रखव है बसाव ने सामान्य तरीका की बात करें तो संतुलित खाद जिन पौधा ने उचित पोषण आलवा बल्ले स्वस्थ कीटर थकी प्रति अधिक सहनशील रहे एटले अपने हर सफर संतुलित खातर वगैरह नो भी उपयोग करव जरूरी है ने बाकी कोई दवाई वगैरह छिड़काव वगैरह भी आपणे करी रहे कहो तो छिड़काव नो समय भी हमेशा अपने कीटना छिड़काव हवारे करो या हाँ ठंडा समय माते करव जरूरी है तो सी अपने फसल में लागेगा कि भाई आम थी रहू है तो आ कीट वगैरह मरेगा तो इनके कोई तरह नो कोई नुकसान नहीं थागा तो इन बात नो अपने ध्यान रखी कामकाज करूंगा तो बढ़िया रहेगा ने भाई एम बने देखो आनी बात अपने आगाड़ी भी करूंगा पर बातचीत ने हाथे आ संजय बत्ती नो टाइम तो केम नहीं अच्छू सु गीत भजन हमरो ने पसे आगाड़ी बात करो।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का एफ

माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना एफएम माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन एआईआर बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन एआईआर आप जैसे

0: इस कार्यक्रम
1: अभी चौपाल कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। आइए सुनते आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दुबई में खेले जाने वाले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के मैच की द्विभाषी बोल बाय बोल कमेंट्री का सीधा प्रसारण। वही हमारे मोबाइल से जुड़े श्रोता सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20। दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू

ये स्वर है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। फिल्म का नाम है अप्रैल फूल। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीत शंकर जयकिशन का है।

महके तो भंवरा वहीं जाए, दिल का पपिया तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार विमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।

0: गुलिस्ता हमारा। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये है इस कार्यक्रम की आखिरी भेंट, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम हिम्मत।

0: अनमोल यादें। अनमोल यादें। नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें, अनमोल गीतों की यादों का ये जो कार्यक्रम है, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसके 10वें एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते जयंत जी।
0: तो राजीव जी, आज

0: के एपिसोड में क्या लेकर के आए हैं आप?
1: देखिए, फिर से मैं ये बात दोहराऊंगा जो मैंने कुछ एपिसोड पहले बात कही थी
0: जी, जी।
1: कि नए फिल्मों के गाने जो है वो एक अलग ही दौर आ गया है जिसमें प्रमोशंस नाम के वजह से म्यूजिक कंपनीज अपने आप चुनते थे कि किस गाने को प्रमोट करना है, मतलब उनके हिसाब से जो पॉपुलर हो सकते थे गाने और
0: उन्हीं गीतों को लिया जाता था।
1: जी हाँ, उनसे जी। उनकी कमाई भी हो सकती थी क्वालिटी उनके जमाने में
0: हाँ,
1: या
0: हाँ।
1: सीडीज के जमाने
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: लेकिन वैसे उसी कारण के वजह से कुछ अनमोल यादें हमने खो दी अगर हमने उस वक्त याद नहीं रखी। तो मैंने ये दो गाने 2000 के बाद के आज के श्रृंखला में चुने हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस 80s के गाने से जिसके बाकी के गाने बहुत चले, जिस फिल्म के बाकी के गाने बहुत चले, फिल्म भी बहुत चली। राकेश रोशन की पहली प्रोडक्शन कामचोर।
0: कामचोर
1: और कामचोर में अगर आप देखेंगे तो पूरा हिट परेड था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: उसमें एक गाना जो है वो थोड़ा बहुत कम चल गया और बाकी उसमें से एक गाना था वो थोड़ा कम चला और बाद में दब भी गया। बहुत ही मीठा प्यारा गाना था, बहुत ही प्यारी मेलोडी थी, इंदिवर जी का लिखा हुआ ये गाना
0: और राजेश
1: रोशन का म्यूजिक
0: जी जी,
1: किशोर और लता मंगेशकर की आवाज
0: और गीत के बोल हैं तुम मेरे स्वामी
1: जी।
0: आइए सुनते।

0: और फिल्म का ऐसा गीत जो बहुत कम सुना जाता है और जिसका जिक्र भी नहीं होता, हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और अब 2000 के बाद की फिल्मों के दो गीत आप सुनवाने वाले हैं राजीव जी।
1: जी हाँ, आपने वो जो बहुत ही जबरदस्त मेलेडी सुनी आपने,
0: हाँ,
1: कामचोर फिल्म में,
0: जी जी,
1: उसी मेलेडी की तरफ मैं फिर से लेके जा रहा हूँ। उसी तरह की बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही गहरी मेलेडी, और ये गाना अनु मलिक जी ने कंपोज किया है।
0: अच्छा,
1: ले चले डोलियों में तुम्हें, जिसे रूप कुमार राठौड़ और चित्रा जी ने गाया है फिल्म फिलहाल के लिए। फिलहाल का जो शीर्षक गीत था
0: जी,
1: आशा जी ने गाया हुआ,
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: बहुत चला। ये गीत फिर से मेरे रोंगटे खड़ा करता है।
0: आइए सुनते हैं।

0: फिलहाल फिल्म का वो गाना जो बहुत कम सुना गया हमने सुना। और राजीव जी, आज के एपिसोड का आखिरी गाना कौन सा होगा?
1: देखिए, ये सारे गाने अनकहे गाने भी बोल सकते हैं। और हाँ। अगला गाना अनकही फिल्म से है।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा।
1: जो 2006 में आई
0: जी,
1: और उसमें बड़ा ही प्यारा गाना है। बहुत ही कम गाने लिखने वाले इसके लिरिसिस्ट थे, सुब्रत सिन्हा। लेकिन मार्केट लीडर, जो आज भी मार्केट लीडर है, प्रीतम साहब का कंपोज किया ये गाना। कुणाल गांजावाला ने गाया है, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था।
0: आइए सुनते हैं अनकही फिल्म का ये गाना।

0: क्या बात है। अनकही फिल्म का ये जो गीत हमने सुना, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा भी न था, और हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के गीतों की यादों से हमारी मुलाकात होगी, और बहुत खूबसूरत ये सिलसिला अनमोल यादों का चल रहा है। अगले एपिसोड में अपने श्रोताओं से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए श्रोताओं नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अनमोल यादें। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।
2: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री बी आर गुदगुदी की लिखी मूल कन्नड़ नाटिका का हिंदी रूपांतर शकुन का शीनू।

0: सरसू, सरस्वती, ए सरसू, जरा जल्दी यहाँ आओ।
1: आती हूँ।
2: क्या है ये सुबह सुबह, क्या है, क्यों चिल्लाते हो? तुम तो ऐसा चिल्लाते हो जैसे कोई सर पर आसमान फट पड़ा हो। कहो क्या बात है?
0: ओहो, क्यों बिगड़ती हो सरसू? वो देखो उधर, उस खिड़की के उस पार, उस पेड़ पर।
2: पेड़ पर?
0: हाँ।
2: क्या है? अरे होगा कोई काला बंदर। क्यों जी, उसको दिखाने के लिए ये सब करना था तुम्हें?
0: ओहो
2: है, तुम्हारा ये चिल्लाना सुनकर तुम्हारे सातों पुत्र पुत्रियां जागेंगे और घर में संगीत सभा रचाएंगे। मुझे क्या चैन से काम करने देना है या नहीं?
0: देखो सरसू, तुम यूं ही बिगड़ जाती हो। जो तुम्हें पेड़ पर दिखाना था वो काला बंदर नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें अकल कम है। वो देखो आँख फड़फड़ाता हुआ बैठा है।
2: फड़फड़ाता,
0: उसी के बारे में कहना था मुझे। हाय राम, आज क्या अशुभ समाचार मिलेगा? मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन लेकर उनको नमस्कार करूं, मगर देख रहा हूँ इस अनिष्टकारी उल्लू को। मेरे नाना जी कहते थे कि उल्लू जैसा मनहूस अनिष्टकारी दूसरा कोई है ही नहीं। अगर सुबह सुबह कोई अनिष्टकारी उल्लू को देख ले तो समझ ले कि किसी बड़ी विपत्ति का उस दिन उसे सामना करना पड़ेगा। हाय राम, हाय राम, अब मैं क्या करूं, क्या करूं?
2: वाह भाई वाह, इस इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में तुम तो जामवंत के युग की बात कर रहे हो। शोक जी, आपको मालूम नहीं कि रोज हमारा नौकर सुबह उठकर पिछवाड़े में काम करते समय उस उल्लू को देखता ही रहता है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। जी ये सब पागलपन छोड़िए ना।
0: नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? पहले मैं इस मनहूस उल्लू को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देने का प्रबंध करूंगा। उसको आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर एक बार भी इधर झांकने का नाम नहीं लेगा।
2: हाय मेरे भाग्य। अरे देखो जी, ये उस तरह मचाना, पिछवाड़े में बहुत कांटे हैं। अरे उस उल्लू को उसके हाल पर छोड़ दो, व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे जी सुनो तो। ओफो, कुछ भी करो तुम तो मेरा कहना मानने वाली नहीं। तो भाई मुझे तो अंदर बहुत काम पड़ा, मैं जाती
0: हूँ। अरे सर पता जा रहा है, कोई है? ए सरसू, सरसू आओ जल्दी से, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। एक लोटा पानी लेती आओ, पानी।
2: फिर हम, ये क्या हो गया? बदन सब खून से भरा हुआ है। और हम, ये क्या कर रहे हो तुमने? ये मैं जो कह रही थी उसको तुमने नहीं सुना, और ये बुद्धूपन का काम किया तुमने। देखो जोर से घास को पकड़ लो, मैं अंदर जाकर अभी कपड़ा लाती हूँ। ठीक है छोची, तुमने उस उल्लू को पाठ पढ़ाने के बदले खुद पाठ पढ़ लिया ना।
0: सरो, तुम हमेशा सभी बातों को हंसी मजाक समझती हो। मैंने तो पत्थर का निशाना उल्लू को ही बनाया था, मगर वो पत्थर थोड़े में ही फिसल कर पेड़ की उस टहनी से टकरा कर वापस मेरे सर को लग गया।
2: ऐसा कह रहे हो कि जैसे तुम अर्जुन के वंशज हो, और तुम्हारा निशाना हमेशा बराबर ही लगता।
0: सरू, मैंने जब से इस मनहूस उल्लू को देखा है तब से ही मनहूस समय का अनुभव कर रहा हूँ। पता नहीं सरू, पता नहीं, मुझे मुझे आज एक तरह की घबराहट सी हो रही है।
2: ओफो, क्या हुआ है जी तुम्हें? तुम्हें क्यों घबराहट होने लगी? तुम्हारी इस तरह की घबराहट को मिटाने के लिए कोई दवा किसी कंपनी ने नहीं बनाई है। बस चलो, अब बहुत हो चुका।
0: सरू, तुम नहीं जानती मेरे मन में क्या हलचल मच रही है।
2: वो क्या है?
0: सरू, कल रात पड़ोस के घर का कुत्ता रोता था, और उसमें वर्षा भी नहीं थी। उसी समय घर के छत पर बिल्ली भी रोती थी।
2: हाँ, और आज उस उल्लू के सुबह सुबह ही दर्शन करने पड़े।
0: हाँ।
2: इसीलिए हमारे नाना जी कहते थे कि ये सब अशुभ शकुन किसी अनिष्टकारी आपत्ति की सूचनाएं हैं। यही ना?
0: तुम तो मेरी सभी बातों को मजाक ही समझती हो। कल मैंने सपने में क्या देखा मालूम है? कल मैंने सपने में माँ को कुएं में गिरते देखा।
2: वाह वाह,
0: माँ कुएं से पानी उठा रही थी, यकायक रस्सी टूट गई। घड़ा कुएं में गिरते ही माँ भी उसके साथ ही कुएं में गिर गई। इसीलिए मैं डरता हूँ कहीं ये सब अशुभ शकुन माँ पर कुछ असर ना करें।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तुम्हारे तर्क का भी जवाब नहीं। अजी, तुम्हारे घर में पानी लाने के लिए टूटी हुई रस्सी ही हमेशा इस्तेमाल होती है। हमेशा माँ यही कहती थी कि इस घर में नई रस्सी शायद तभी आएगी जब तक कि शायद कोई कुएं में गिर ना पड़े।
0: ओ, सरसू,
2: सुनो, उसी विचार को तुमने अपनी खोपड़ी में रख लिया है और सपने में उस आपत्ति का साक्षात्कार कर लिया। बस यही है आपके मन का भ्रम।
0: नहीं भाई नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हें तो मालूम है कि माँ के बीमार होने का पत्र पिताजी से आया था और उसमें ये भी लिखा था कि बीमारी और बढ़ गई तो वो तार भी भेजेंगे।
2: इसीलिए साहब को घबराहट हो रही है।
1: माँ, माँ, माँ स्कूल जाने का समय हो रहा है, कुछ खाने को दो ना माँ।
0: सरू, अगर माँ को कुछ हो गया तो धत तेरी की छींक दिया। क्यों मेरे शैतान के बच्चे, तुझे एक ही बार छींकना था क्या? चल जल्दी एक बार और छींक छींक छींक, नालायक कहीं का।
1: कोशिश तो करता हूँ बापू छींकने की, लेकिन नहीं हो सकता।
0: नहीं हो सकता, निकम्मा कहीं का। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से।
2: उस बेचारे पर क्यों बिगड़ते हो?
0: तू चुप रह, तुझे तो हमारे संप्रदाय सभ्यता सभी ढकों से दिख पड़ते हैं। हाय प्रभु, मेरी रक्षा तुम्हें करना प्रभु।
2: ठीक है महाशय, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर अब क्या तुम तौलिया लेकर नहा कर मेरी रक्षा करोगे? सुनो, समय बीता जा रहा है।
0: ठीक है देवी जी, तुम्हारी तो माननी ही पड़ेगी। देखो सरू, एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी का तो बना दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मैं यूं गया और नहाकर यूं आया।
3: हाय भगवान, मैं मर गया। जल्दी आओ सरू, मैं गिर गया। हाय मेरा हाथ पैर टूट गया।
2: मैं तो तुम्हारी इन सब हरकतों से तंग आ।
0: अरे देखो तो सही, उस कोने में देखो, उस दरिद्र उजली छिपकली को, वो मेरी बाईं ओर गिरी और मैं उससे बचने के लिए थोड़ा इधर उधर हिलने लगा तो साबुन से पांव फिसल कर गिर पड़ा। ओहो, मेरा वो पांव ही टूट गया। हाय भगवान, हाय भगवान, मैं क्या करूं?
2: तुम्हारी आंखों का भी जवाब नहीं, छिपकली दाईं ओर पड़े या बाईं ओर, तुमने तो अकलमंदी दिखाने जाकर पांव तोड़वा दिया। ये शकुन का भूत कहीं तुम्हें खा ही नहीं।
0: क्या कहती हो जी, तुम नहीं जानती कि छिपकली का शकुन बहुत भयंकर होता है। मेरे नाना जी कहते थे कि छिपकली का शकुन सूर्योदय सूर्यास्त जैसे सत्य होता है।
2: मैं कहती हूँ छोड़ो जी। क्यों जी, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे नाना जी ने जीवन भर तुम्हें शकुन के बारे में ही पाठ पढ़ाया है क्या?
0: जाने दो सरू, अब इस छिपकली के स्पर्श के परिहार के लिए कुछ व्यवस्था करो। हाँ, मुझे याद आया, परसों में गाय का घी लाया था ना सरू, उसको डालकर एक दिया जलाओ और उस दिए को भगवान के सामने रखो। तुम नहीं जानती सरू, इससे पीड़ा का परिहार हो जाता है।
2: बड़े आए घी का दिया जलाने वाली, यहाँ तो बच्चों को तेल भी नसीब नहीं और ये चले है गाय के घी का दिया जलाने।
0: सरू,
2: वो क्या भगवान एक ही दिया जलाने से संतुष्ट नहीं होते? बस बस बस, जल्दी स्नान समाप्त करो।
0: ठीक है बाबा, करता हूँ। जय गंगा जमुना।
2: क्यों जी, स्नान कर लिया? ठीक, अब भगवान के सामने दिया जला हुआ रखा है, जाओ। हाँ, और कॉफी भी तैयार है।
0: सरू,
2: क्या है?
0: अमावस्या परसों ही होने वाली है ना?
2: हाँ, तो क्या हुआ?
0: वो इसलिए कहता हूँ, वो बस मनहूस कुत्ता रात भर रोता रहा। हाय भगवान, मेरी माँ की रक्षा करो।
2: मेरी समझ में नहीं आता कि कुत्ते के रोने का और माँ की तबीयत से क्या संबंध है।
0: ओ सरू,
2: वो मैं कहती हूँ छोड़ो जी, बेकार क्यों सोचते हो? कुछ नहीं होगा माँ को, अगर कुछ होगा भी तो अस्पताल ले जाएंगे, दवा दिलवाएंगे, उससे माँ ठीक हो जाएंगी। जल्दी जलपान कर लो और डाक खाने जाकर ट्रंक कॉल करो, माँ की तबीयत की पूछताछ करो और आते समय बाजार से सब्जी भी लेते आना।
0: अच्छा लाओ कॉफी, मैंने पूजा भी कर ही ली है। ये बिल्ली को मेरे सामने से चली, इसका हमारे घर का दूध ही मुंह लग गया है। मनहूस कहीं की।
4: पोस्टमैन, नमस्ते श्रीनिवास जी, आपके लिए तार है।
0: तार? हाथ पांव ठंडे पड़ गए। देखो भाई, ये तार मेरा ही है ना? और एक बार देखो तो सही।
4: मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, ये तार आपका ही है।
0: ये क्या ही सुबह सुबह मुसीबत भाई, मुझे जरा बता देना ये तार कहाँ से आया है।
4: घटक प्रभा से आया है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, सलाम साहब।
0: हाय भगवान, ये डाकिया क्या लाया सुबह सुबह।

0: माँ की हालत बिगड़ गई होगी, माँ को घटक प्रभा ले गए होंगे। हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ मर गई। सरू, ए सरू जल्दी आओ। हाय भगवान, ये क्या क्या तूने। सरू सरू आओ, मेरा सत्यानाश हो गया, मैं जैसा सोचता था वैसे ही हुआ। हाय भगवान, मुझे अनाथ बना दिया, मुझे अनाथ बना दिया भगवान।
1: क्यों रो रहे हो?
0: आजा गोपी, आजा बेटे, तुम्हारी दादी चल बसी।
1: दादी चल बसी, बीपी दादी को तार आया है।
2: सच? हाय राम, क्यों जी, क्या ये खबर सच है? हाय राम, ये क्या हुआ? खैर जाने दीजिए ना, धीरज रखिए। देखिए माँ जी की भी तो उम्र काफी थी, भगवान की चाहत के सामने किसका बस चलता है। माँ जी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही चाहती थी। क्यों जी, और क्या लिखे है जी तार में?
0: और क्या लिखना बाकी है, आखिर में वो अनिष्टकारी शकुन ने अपना प्रभाव दिखा ही दिया है।
2: वो देखो आपके मित्र रामचंद्र जी आ गए।
0: कोई आया हो तो अब क्या होने वाला है, जो होना था वो तो हो चुका है।
3: क्या हुआ भाभी जी, शिनू को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है?
2: भाई साहब, उनके घर से तार आया है, उसमें उनके माँ जी के गुजर जाने का समाचार लिखा हुआ है।
3: ये तो बहुत बुरा हुआ।
0: हाँ रामू, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैंने माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं किए।
3: रो मत, धीरज रख, लाओ ये टेलीग्राम मुझको दो। He has been promoted and transferred and all are well in. क्या भाभी जी, आप भी इस बुद्धू की बातों में आ गई।
2: क्यों?
3: इस तार में ये लिखा है कि तुम्हारे बेटे को इंजीनियर की पदोन्नति मिली है।
2: क्या?
3: हाँ, प्रमोशन।
0: प्रमोशन
3: और घटक प्रभा को बदली हो गई है, यानी कि ट्रांसफर। तुम लोग तो बिना तार पढ़े ये सब हंगामा मचा रहे हो। गोकाक के सभी लोग सकुशल हैं, इस तार में ये भी लिखा हुआ है।
2: क्यों जी, बिना तार पढ़े ये सब गड़बड़ी पैदा की गई? मुझे क्या मालूम था रामचंद्र भैया, मैं समझी थी कि ये तार पढ़कर ही मुझे बता रही है।
0: हाँ रामू, सचमुच माँ को कुछ नहीं हुआ क्या?
3: ये क्या कर रहे हो शिनू, गंवार जैसी हरकतें। उठो, मुंह धो कर आओ पहले। मैं तुम्हें मानसिक रोग चिकित्सालय ले जाकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊं। तुम तो बहुत भारी शकुन के शीनू हो भाई।
0: रामू, ये शुभ समाचार इसलिए आया कि सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी।
2: अच्छा जी, तो तुम सदा अपनी ही हाँकते रहोगे। आखिर भाई साहब ने ठीक ही कहा है, तुम ठहरे जो शकुन के शीनू।
4: शकुन का शीनू, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ये नाटिका सुनी। मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुडगुडी, हिंदी रूपांतरकार एस ए हुनगुंड, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दार भेकर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है फिल्म धड़कन का दो गाना, स्वर उदित नारायण और अर्लिका याग्निक के, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

ये स्वर थे अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के। फिल्म का नाम था धड़कन। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें अलका याग्निक और अभिजीत की, फिल्म का नाम जुदाई।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। युगल स्वर रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला के गीत को समीर ने लिखा है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: प्यार तो होना ही था, गीता फिल्म का नाम, जिसका दो गाना अभी आप सुन रहे थे, रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला का गाया हुआ।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

और अब सुनिए जतिन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोसले और अभिजीत की आवाजें। फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले, आदित्य नारायण और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है रंगीला। इस गीत को महबूब ने लिखा और धुन बनाई ए आर रहमान ने।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय

0: औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
4: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जो आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर

0: हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, इस वक्त कुछ गीत ऐसे आपके लिए हमने चुने हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी को याद कर। तो चलिए, इस वक्त कुछ ऐसे ही भावुक नगमों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम का यह पहला गीत। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले के, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। हाँ, कभी कभी हम किसी के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। आइए ऐसा ही एक गीत सुने जहाँ कोई किसी के रंग में रंग गया है। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, गीतकार आनंद बख्शी है, संगीत सचिन देव बर्मन का है।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। दोस्तों, किसी की यादों की खुशबू हमेशा हमारे दिल के करीब होती है, है ना? होती है ना? तो चलिए इस गीत के माध्यम से हम उन पत्रों को, उन खतों को ढूंढते हैं जो हमने मोहब्बत के नाम लिखे थे

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था कन्यादान। गीतकार थे नीरज और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, नजरों ने जब ख्वाबों को रंग देना शुरू किया तो दिल ने भी मोहब्बत की एक नई कहानी लिख दी। हाँ, आइए सुनते हैं यही खूबसूरत एहसास इस गीत में, जिसे

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम है शर्मिली। गीतकार नीरज हैं, संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं। आपने ये गीत सुना है ना, खिलते हैं गुल यहां खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहां मिल के बिछड़ने।

करने को। जी हाँ, जिंदगी की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, पल भर ठहरती है और फिर याद बनकर रह जाती है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता तो बहुत है मगर जिंदगी उन्हें ठहरने नहीं देती। हाँ, जैसे अब ये वक्त भी तो नहीं ठहर रहा ना। गुलजार साहब के खूबसूरत बोल और किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म किनारा का ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, जाने क्या सोचकर नहीं गुजरा। आइए सुनते हैं ये गीत। संगीतिया है राहुल देव।

तो दोस्तों, अब इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के गीतों की मिठास या यूं कहें कि कसक बहुत देर तक आपके साथ बनी रहेगी। फिलहाल आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से, और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं। लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

18 साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान न मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी

रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी। लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

ये गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहली ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

की किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

0: बनके।
1: लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

0: सुलझे।
1: आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

हिंदी दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधा।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में दूसरा आदमी फिल्म से। गीत के बोल मेजर सुल्तानपुरी के हैं और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, अभी आपने किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में दूसरा आदमी फिल्म का गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं रफू चक्कर फिल्म से शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज में, गुलशन बावरा के बोल ही कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

श्रवण अभी आपने आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में सुहाग फिल्म का गीत सुना। आनंद पक्षी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं माचिस फिल्म से, सुरेश वाडकर, हरिहरन और साथियों की आवाज में। गुलजार के बोल ही विशाल का संगीत।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में आइए सुनते हैं मेरी जंग फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मेरी जंग फिल्म का गीत कभी आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। इंसानियत फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने हनीमून फिल्म का गीत सुना अर्का याग्निक और सुरेश वाडकर की आवाज में। मजो सुल्तानपुरी के बोल थे आनंद विलेन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनाते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फर्स्ट फिल्म से। आनंद पक्षी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने किशोर कुमार और साथियों की आवाज में सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत सुना। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज में तेजा फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

नितिन मुकेश, अलका याग्निक और शब्बीर कुमार की आवाज में गाए तेजा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ प्रणाम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिन्दी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेयरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय

0: खिलाड़ी सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: As Harshita drives it towards the mid-wicket region, gets a single to end over number 16 and 100 up on the board for Sri Lanka, 100 for 4, and in a good position from here on we need to really pull this one off and for the reigning champions to march into the final.
2: Yeah, defending champions. So, this tournament mein DRS nahi hai, aap teesre umpire se फैसले को बदलने के लिए गुहार नहीं लगा सकते हैं। स्पीड गन भी नहीं है कि कौन बॉलर किस रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है। साझेदारी 58 गेंदों पर 67 बेशकीमती रन की हो चुकी है और इतने ही ओवर के बाद 92 रन बनाए थे 5 विकेट को खोकर पाकिस्तान ने 5.95 के औसत से। धन्यवाद यशवंत। बेहतरीन जबकि 100 रन पूरे हुए 16 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका की इस पारी के, तो इतनी ड्यू है मैदान पर कि बॉलर के जो फुट मार्क्स हैं उनके पैरों से जो मिट्टी ढीली हो जाती है वहां से अपने हाथ पे पहले मिट्टी लगाकर फिर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि घास पे करेंगे तो उस पर तो ड्यू ओस नजर आ रही है। 24 गेंदे 31 रन, सादिया इकबाल ने 12 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, फातिमा को 2 विकेट मिले, साना को जो बॉलिंग करने के लिए वापस आ रही है 2 ओवर उनके शेष हैं। कुल मिलाकर उनको आना लाजमी था क्योंकि कुल 4 ओवर ही शेष रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि पारी का अंतिम ओवर तो ये नहीं कर पाएंगी। हाँ, अगर एक ओवर बचा के रख लें तो बात हो सकती है। फील्ड जमाई जा रही है, स्वीपर कवर जा रहा है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर और फिर 3 खिलाड़ी एक कतार में ऑफसाइड में नजर आ रहे हैं। 7.75 का आस्किंग रेट है। क्रीज के कोने से बेहतरीन स्ट्रोक खेला लेकिन उसको कैच में तब्दील करने का प्रयास और यह बॉलिंग चेंज पे और किसका, हर्षिता का विकेट मिल गया। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने में सफलता मिल गई श्रीलंका को। क्रीज के कोने से एक वाइड गेंद जो कि काफी दूर थी, नीचे गिरते हुए एक फॉलिंग शॉट जैसे कभी कभी ऋषभ पंत खेलते हैं, उल्टे बल्ले से नीचे गिरकर खेलने की कोशिश की और दायरे के अंदर विकेट के पीछे वो जो खिलाड़ी फाइन लेग पर खड़ा हुआ था, शॉर्ट फाइन पर 25 गज का घेरा होता है विमेंस क्रिकेट में, वहां अपना विकेट दे बैठी। अरबी तक बहुत अच्छा खेली थी लेकिन हर्षिता समरा विकरा 31 गेंदों पर 36 रन बनाकर और पाकिस्तान को एक मौका देकर कि वो मैच में वापसी करें, पेविलियन में वापस जा रही हैं। अचानक मैच में ये मोड़ आया लेकिन श्रीलंका के पास बैटिंग अभी शेष है। फातिमा एक आसान सी गेंद थी, बहुत ही वाइड गेंद थी, उस पर विकेट मिलने की कोई संभावना नहीं थी लेकिन गेंदें कम होती चली जा रही थी और रन ज्यादा बनाने की जरूरत थी इसलिए एक इम्प्रोवाइज करके, एक मैन्युफैक्चर करके बनाना पड़ा एक स्ट्रोक और ऐसे में एक योजनाबद्ध तरीके से बॉलिंग की और फील्डर वहां मौजूद था, शॉट दायरे के अंदर फाइन लेग रखा, उसको बाउंड्री पे नहीं रखा, लूप बनाती हुई वो गेंद आगे की तरफ जब आई नीचे गिरते हुए अपना संतुलन खोया नहीं और सुरक्षित उस कैच को पकड़ लिया। नीलाक्षी सिल्वा अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में अच्छी साझेदारी हर्षिता के साथ निभाई थी, अभी कविशा मौजूद है, अभी उम्मीद है इनसे। इसके बाद विकेट कीपर कौशनी भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेती हैं। बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है। 23 गेंदे 31 रन, कौन खेलेगा भारत के खिलाफ उस इतवार के फाइनल में, ये सवाल सब

0: के दिमाग में है। साना अब ओवर द विकेट आ गई है, डिफ्लेक्ट कर दिया उस गेंद को, डाइव लगाते हुए फील्डर से दायरे के अंदर रुके नहीं, स्क्वायर थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ, चार रन श्रीलंका को। साना खफा है लेकिन वो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन सूझबूझ, एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी पेवेलियन में से आया है, इतनी अपनी क्षमता रखता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है स्ट्रोक को खेलने की, और खिलाड़ी को फील्ड कर देता है दायरे के अंदर के, बीट कर देता है उसको। नीलाक्षी के चार रन, उनका विश्वास इसके साथ बढ़ेगा। 22 गेंदें 27 रन फाइनल में प्रवेश करने के लिए, और पाकिस्तान को चाहिए 5 विकेट, 104 5 विकेट पर। यह 17वां ओवर चल रहा है, 4 गेंदें इस ओवर में शेष हैं। नीलाक्षी के पास ही स्ट्राइक है, विकेट कीपर बिल्कुल जुड़ी हुई खड़ी हुई है, ऑफ स्विंग के बाहर से मोड़ दिया, उसके पीछे जाना पड़ेगा, एक रन पूरा किया, और इस समय अगर हर्षिता होती तो ये दूसरा रन पूरा हो जाता। लेकिन अभी नए खिलाड़ी मैदान पर आई ही हैं और इसीलिए वो बेहतर सोचा, वो नीचे गिर के, आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऑफ साइड में गिर गई और लेग साइड का उल्टा स्ट्रोक खेला, एक रैंप स्ट्रोक जिस तरह से होता है, और आप लोगों ने अगर ऋषभ पंत को खेलते हुए देखा है तो उस तरीके का ये फॉलिंग स्ट्रोक था। कभी रोहन कनाई इसको इस तरह से खेलते थे, बरस हो गए। लेकिन वो T20 क्रिकेट का कमाल है कि वो वापस अब क्रिकेट का रूपरेखा में शामिल हो गया है, और फातिमा सना को तीसरा विकेट मिला उस इसका थी। हर्षिता का विकेट बहुत मायने रखता था श्रीलंका के लिए। इस बीच ये गेंद स्टंप्स के एकदम करीब आके धीमी गेंद और विकेट के पीछे के लिए गैच के लिए, उत्साह में ज्यादा सना अपील कर रही है, लेकिन बाकी साथी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया और अंपायर ने नकार दिए उस अपील को, और DRS है नहीं। बैक ऑफ द हैंड से उस गेंद को किया था, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर जा रही थी। इस तरह से पहले भी खिलाड़ी इस मैच में आज आउट हो चुके हैं दोनों ही पारियों में। मुनीबा अच्छे रिफ्लेक्सेस दिखाए, गैदर कर लिया, गेंद काफी ज्यादा वाइड हो जाती है तो विकेट कीपर को समय पे पहुंचने में मुश्किल होती है, दुश्वारी होती है। 20 गेंदे 26 रन, क्या यह मैच पाकिस्तान की तरफ जा रहा है? 2 गेंदे शेष है 17वें ओवर की, 105 5 विकेट पर। ये गेंद धीमी गेंद खेला है, गेंद ऊपर जरूर चली गई है, उस ओर फील्डर मौजूद है नहीं, एक टिप्पा खाके बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या 6 रन होंगे, प्रतीक्षा हम करेंगे। 26 रन चाहिए थे इस गेंद से पहले 20 गेंदों पर, आस्किंग रेट था 7.80, लेकिन एक ऊंचा लंबा स्ट्रोक सफलतापूर्वक खेला गया है, और क्या तारीफ करनी होगी कविशा की, पहले ही बना लिया था मन उस स्ट्रोक को खेलने के लिए। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो भी ये देखना चाहते हैं कि ये 4 है अथवा 6 है, जबकि इस स्ट्रोक को खेला और ये 6 रन है या नहीं, नहीं, पहले टिप्पा खा गई, गेंद हवा में जैसे ठहर गई हो और फिर नीचे घूमती हुई नीचे गिरी और बाउंड्री लाइन से मुश्किल से एक कदम पहले टिप्पा खाकर फिर सीमा रेखा से बाहर हो गई। 4 रन, कविशा 33 32 गेंदों पर, और फातिमा साना कप्तान पाकिस्तान की अगली गेंद करने के लिए, और पैड पे लगी, आउट हो जाएगी, निश्चित रूप से LBW दिया जाएगा, नीचे रहती हुई गेंद और कविशा का एकाग्रता बंद हुई, रिफ्लेक्सेस नहीं दिखा पाई, अचानक नीचे रह गई, लेकिन उनके इशारे से लग रहा है कि बैट पे भी लगी थी गेंद, DRS है नहीं, लेकिन मायना रखता है अंपायर का निर्णय जिन्होंने उंगली उठा दी है, और एक और क्षति हो गई है श्रीलंका को। बैट पे लगी और फिर उसके बाद जाके पैड पे लगी, और क्यों आउट दिया ये समझ में नहीं आया, महंगा साबित होगा क्या श्रीलंका के लिए ये समय बताएगा, लेकिन एक और खिलाड़ी आउट हो गया श्रीलंका का, और साना का ये 4th विकेट।
1: व्हाट अ स्प्लेंडेड ओवर दिस हैज बीन बाय द पाकिस्तान कैप्टन साना, अकॉर्डिंग फॉर द 2 वेल सेट बैटर्स, कविशा दिलारी गॉन फॉर 33 ऑफ 33 बॉल्स, एंड बिफोर दैट इट वॉज द वेल सेट हर्षिता, and this over has once again brought Pakistan back into this game. Vinith, 17 overs gone by, Sri Lanka 109 for 6 now, and this semi-final, the second semi-final of Women's Asia Cup 2026, going the distance, really turning out to be so interesting, Vinith.
0: और मैं समझता हूँ जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं किसी भी इस स्तर के टूर्नामेंट में DRS के बिना, इतने संसाधन है क्रिकेट में, DRS अवश्य होना चाहिए।
1: Yes, couldn't agree with you more on that count, Vinith, because one small decision, no umpire makes a mistake intentionally, but one small error can really derail a team's fortunes. 22 of 18.

0: और इसके साथ ही 6 रन। क्या इस शॉट के साथ ही श्रीलंका एक कदम और आगे बढ़ गई है जीत के लिए। अब उनको चाहिए बहुत कम रन रह गए, 11 गेंदे 12 रन अब जीतने के लिए चाहिए। ये गेंद लूप बनाती हुई फ्लाइट कर दी थी इस गेंद को फुल टॉस पर, ऑन साइड में गेंद को खेला, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से बिल्कुल हवा के रास्ते, हवाई स्ट्रोक जिसको कहते हैं, और गेंद चली गई बाउंड के बाद। फातिमा सना इस समय सदमे में खड़ी हुई हैं। एक एक रन कीमती है, एक एक गेंद पे होने वाली प्रतिक्रिया कीमती है। और क्या यहां से, जबकि ये नो बॉल का इशारा अंपायर का अब लेट आया है, 11 गेंदे और अब 5 रन चाहिए। वो छठा, वो जो छक्का गया था उसका माइनस नहीं किया गया था, फ्री हिट भी मिलेगा। क्या इस गेंद पर ये मैच खत्म हो सकता है? 126 6 विकेट पर, कौशन ही सामने है, विकेट कीपर बैटर। और ये क्या विडंबना है कि कप्तान जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं उनकी गेंद पर ये छक्का लगा। धीमी गेंद, शॉर्ट गेंद, घुमा दिया उसको, उस ओर फील्डर मौजूद है, वहां पर खड़ी हुई है नशरा संधु, उठाएंगे लेकिन तब तक एक रन ही और मिलेगा। 10 गेंदे 4 रन, अब तो ये श्रीलंका का मैच होना चाहिए। और कुछ सोती हुई चिंतित सी, मायूस सी, निराश सी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना उस जगह जा रही हैं जहां से वो दौड़कर ये तेज बॉलिंग कर रही हैं। 4 रन चाहिए जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए। मुकाबला बहुत जोरदार होगा, श्रीलंकाई टीम में संघर्ष करने का जबरदस्त मादा है। 4 गेंदे शेष है इस ओवर में भी और 4 रन ही चाहिए। इत्मीनान से खेला, दायरे के अंदर गेंद रुकी नहीं, दूसरे फील्डर भी उस गेंद के ऊपर पसर गए इससे पहले कि वो उस गेंद को उठाएं, तब तक दूसरे रन करीब ही पलट कर आ रहे हैं तेजी के साथ। आयशा जफर जब प्रयास कर रही थी उस गेंद को लेने के लिए तो वो उनके नीचे की तरफ गेंद अंदर चली गई और तब तक वो रन करने में आसानी हुई। तो 2 रन रह गए बनाने के लिए, 3 गेंदे इस ओवर की और फिर 6 गेंदे, 9 गेंदों पर ये 2 रन बनाने हैं। 1 रन चाहिए स्कोर को बराबर करने के लिए और 1 रन और चाहिए जीतने के लिए। 1 रन मोर एंड स्कोर इज इक्वल 129/6। बहुत खफा नजर आ रही हैं इस समय नशरा संधु, तैयार कूल एस कोकोम्बर, ठंडे दिमाग से खेल रही हैं। ओ और जैसे ही मैंने कहा कमेंटेटर्स कर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, 2 रन चाहिए, 2 सिंगल काफी है, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और इस तरह से वो परेशानी में पड़ सकती थी। थोड़ी सी फास्टर वन थी, बहुत बाहर नहीं थी, स्टंपिंग करने की कोशिश थी लेकिन वो क्रीज में सुरक्षित थी, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। 8 गेंदे 2 रन अब चाहिए 129/6 विकेट पर। जीत के लिए चाहिए 131, बराबरी के लिए चाहिए 130। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना बॉलिंग कर रही हैं, दाएं हाथ से तेज बॉलिंग, ओवर द विकेट वो कर रही हैं, दाएं हाथ के बैटर उनके सामने हैं। मुनीबा खड़ी हुई हैं, थोड़ी ऑफ साइड में हटकर खड़ी हुई हैं, ऑफ स्टंप के पास और उससे थोड़ा सा और वाइड खड़ी हुई हैं, बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई हैं, पास खड़ी हुई हैं स्टंप्स के। और फातिमा सना की अगली गेंद और उसको उल्टा रैम स्ट्रोक खेल दिया है, इसमें 4 रन और श्रीलंका ने प्रवेश कर लिया है 2026 के एशिया कप के फाइनल में।
1: यस, व्हाट अ स्ट्रोक दैट वाज, रियली टेकिंग द डिफेंडिंग चैंपियंस इनटू द फाइनल ऑन संडे वेयर दे विल मीट इंडिया। श्रीलंका विन बाय 4 विकेट्स, इज अ मैच विच हैज गॉन टॉपसी टर्वी, pendulum swinging from one side to another, and finally it was that partnership between Harshita and Kavisha which really tilted the match in favor of Sri Lanka, and then they had Nilakshi at the end coming good and pulling off a fine victory for Sri Lanka, and so the reigning champions would try to repeat their heroics from the last edition, Vineet, and challenge India in the final on Sunday, the day after tomorrow.
0: और स्ट्रोक क्या खेला, बैट को उल्टा कर लिया, चेहरा आसमान की ओर, और उसको स्कूप कर दिया विकेट कीपर के सर के ऊपर से पीछे वाली साइड स्क्रीन की ओर से, लाजवाब स्ट्रोक, प्रेजेंस ऑफ माइंड।
1: Yes, absolutely. Sri Lanka booked their place in the final with a fine 4-wicket victory. Once heart goes out to the Pakistan captain Fatima Sana for an all-round heroics, 47, 4 wickets, but going in vain. And it is the Sri Lankans, the defending champions, who will play the final on Sunday. Much to look forward to in the program which is coming up, the post-match show. And it is over to our host Gitanjali Soni and Manish Jolly, along with our experts.

0: Player of the Match. Yes, it is done and deal is sealed. Welcome to the player of the match, and very soon we'll get to know. But right now the news is that Sri Lanka will be joining India in the finals, and that's going to be a cracker of a beginning. And right now we are very happy and excited to welcome you all in the studio. I'm Geetanjali Soni, with me is Munir Jolly, and our experts are very much around, and they are going to share their expert opinions soon. Soumitra Bose, senior sports journalist. Vaishali Mathur, former Indian cricketer. Welcome one and all.
1: बड़ा इमोशनल मोमेंट हो रहा है यहाँ पे.
0: अच्छा.
1: जब क्रिकेट का मैच एकदम क्लोज हो जाता है ना, तो बड़ा इमोशनल हो जाता है.
0: You
1: know, setting a target of 130, and you know, it's a cliffhanger.
0: I know.
1: If not last over, but then you know, six wickets down. Soumitra Bose, आप भी ऐसा फील कर रहे हैं सर?
2: जी हाँ, I mean, pure 100% entertainment. What a finish! I mean, it went top and down, up. Wonderful finish. I think the Sri Lankans played like defending champions, and from a very precarious situation, winning with ease. Fantastic.
0: Actually, Fatima, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, हमने जब शुरुआत की थी शो की, तो सबका जो फेवरेट था वो बेसिकली हर कोई कह रहा था कि श्रीलंका ही जीतेगी. मेरे मुंह से फातिमा निकल गया, क्योंकि फातिमा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. वैशाली, आपको क्या एक परसेंट भी लगा था कि जिस तरीके से इनिशियल विकेट्स श्रीलंकन टीम के गए थे और कॉन्फिडेंस काफी शेकी लग रहा था? दिस इज नथिंग लेस देन मिरेकल, आई थिंक.
3: यू आर राइट, क्योंकि कैप्टन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस साइड से दिखी नहीं थी बैटिंग हैंड से. लेकिन उसके बाद जैसे विकेट दो फॉल हुए, थ्री हुए, फोर हो गए, एंड उसके बाद भी किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. आई थिंक जितने भी फैंस देख रहे, किसी को भी इतना भरोसा नहीं था कि आज श्रीलंका जीतेगा, क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एंड बॉलिंग जो कर रहे थे आज पाकिस्तान टीम, लग रहा था कि आज फाइनल यही उठा के लेके जाएंगे.
0: Absolutely.
3: लेकिन उसके साथ जिस तरह से धिलारी ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, एंड लास्ट में 15 बॉल्स एंड 14 रन्स रह गए थे, एंड जो जिस तरीके से एक फ्लोलेस बैटिंग हुई है, एंड उसके साथ साथ जो पीछे उन्होंने स्कूप करके खेला है, वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी. एंड पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रही है, 60+ रही है दोनों की पार्टनरशिप, तो मैं कहूंगी कि आउटस्टैंडिंग है रहा है ये मैच. एंड इस तरीके का ये चकाचौंध करने वाला जो आज का मैच था, वो किसी ने भी अज्यूम नहीं किया था पाकिस्तान टीम के साथ कि 130 वो स्कोर करेंगे एंड उसके बाद इतनी अच्छी फाइट देंगे.
0: एब्सोल्युटली. एंड सुमित्रा, आई एम स्टिल लाइक इन डिसबिलीफ. आई वाज डबल चेकिंग माय सेल्फ वेदर आई एम अनाउंसिंग करेक्टली. श्रीलंका फाइनली हैज वॉन एंड दे आर इन फाइनल्स. दिस इज एक्चुअली क्वाइट मिरेक्युलस, आई बिलीव.
2: दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम. लाइक इनफैक्ट इन द मिडिल शो हम पावर प्ले की बात कर रहे थे. आप देखिए, पावर प्ले डिड नॉट कम इन टू प्ले एट ऑल. कि जब आप पाकिस्तान बैटिंग कर रहे थे, दे वर यू नो फोर डाउन 54
0: राइट
2: इन द 10th ओवर, एंड श्रीलंका वैसे ही दे वर 33 for 4. तो मोर लेस तो द पावर प्ले वॉज वर्किंग वेयर ऑन बिहाफ ऑफ द बॉलिंग साइड.
0: यस.
2: And I think in spite of the fact that Pakistan itna acha bowling kiya, itna acha fielding kiya, and the way the middle order and the lower middle order won the match for Sri Lanka talks about very well organized, well orchestrated the backroom jo aapko jo hota hai, that they did not panic.
0: Ji.
2: That not to panic in such situations and yet win a match against a decent bowling attack when the ball was turning. And the best thing was how they constructed the innings, how they paced the innings. One ko twos karna, twos ko threes karna, then not to lose. There were times we did not even score boundaries. Dekhi char chawa, but finally how they paced the innings, and they won very, very comfortably, considering the fact that they were under so much pressure.
0: Gee, but I think there are few people who are never under pressure, Munish, and that's our callers, and they are already रेडिंग टू गो. एक बार फिर से अपने श्रोताओं को हम नंबर बता देते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342108 3 2342108 5 और 011 हमारा कोड है. और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर. हेलो.
4: हेलो, हाय, मैं वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ.
0: मिस्टर रेड्डी, हाउ आर वी?
4: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बहुत

0: अच्छे हैं, कहिए क्या कहना चाहेंगे।
1: अच्छा मैच का कमेंट्री सुनवा देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीलंका की बैटिंग को देखते हुए वो लॉन्ग ऑर्डर का बैटिंग भी अच्छा चल रहे हैं, लेकिन हमारा बैटिंग मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आने वाले फाइनल के लिए हमारा तैयारी कैसे होना है ये तो बता दीजिए।
0: जी हमारे एक्सपर्ट जरूर बताएंगे कि आने वाले फाइनल के लिए क्या तैयारी होने वाली है हमारी। सो हु वुड लाइक टू फर्स्ट टेक दिस क्वेश्चन। वैशाली आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कैसी स्ट्रांग तैयारी है हमारी?
2: देखिए श्रीलंका एंड इंडिया दोनों ही टीम एक दूसरे के बराबर बिल्कुल एक ही लेवल पे है। जो अच्छा खेलेगा वही ट्रॉफी लेके जाएगा। और बैटिंग एंड बॉलिंग एक ऐसा पार्ट है जो हर कोई निभाता है अच्छे से, लेकिन जहां पे फील्डिंग अच्छी होती है वहीं एक

0: कोई निभाता है अच्छे से, लेकिन जहां पे फील्डिंग अच्छी होती है वहीं एक आपका ट्रॉफी की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जहां पे लैक कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि हम बैटिंग में कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, वहां श्रीलंका भी कर रही है। सो दोनों साइड से पलड़ा सेम ही है
1: जी, पलड़ा सेम है। मुनीश, आप वाकई मुझे लग रहा है किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस वक्त।
2: मुझे बहुत दुख हो रहा है
1: किस लिए?
2: और सुखी भी फील कर रहा हूँ मैं, बहुत सुख मिल रहा है मुझे।
1: अच्छा,
2: कितना कंपेटिटिव गेम खेला। बट दादा, जस्ट कमिंग बैक टू द गेम, यू नो देयर इज नो DRS एंड दैट्स अ बिग एरिया ऑफ डिस्कशन, स्पेशली व्हेन यू सॉ कविशा दिलहारी, शी वाज सेट बैटर गेटिंग LBW टू फातिमा साना, कपल ऑफ रीप्लेस वी ऑल्सो गेट टू सी ऑन द टेलीविजन। But don't you think that you know the AFC should now take you know a definite step so that you know such errors are not committed again?
3: Unfortunate not to have DRS in such a situation, especially when you're doing a continental championship. It's something I'm quite surprised to see, because she was definitely not out. आपने तो देखा ही होगा, हमने replay में clearly देखा है कि there was an inside edge और उसको out दिया गया। If Sri Lanka would have, imagine if they would have lost this match, this would have become a very controversial point of view. I am more surprised because, देखिए, Asian Cricket Council का president कौन है? ICC का जो सबसे बड़े आदमी वही है। The richest cricket boards are in Asia. India is there, India is playing. Pakistan, then you have Sri Lanka, you have Bangladesh. Some of the most competitive cricket boards, and it is in Asia, and it is being Dubai. Dubai mein ho raha hai, aur ICC ka headquarters kahan hai? Dubai mein. Aur phir bhi DRS nahi hai. Such elementary things, jo actually makes a difference between the right decision and the wrong decision. I am very, very surprised.
1: It is.
3: And fortunately, Sri Lanka won this match. Agar ye match haar jaate, this would have become a pain point and probably a headache. And because media would not have been very kind to the cricket authorities, definitely Asian Cricket Council and I would say ICC is equally responsible because the cricket's headquarters are in Dubai. Aapka jo the top members of ICC are also ICC top members. So DRS hona to bahut hi zaruri tha.
1: Ji, aur is waqt bahut zaruri, aur hamare callers hain, ek aur caller jud gaye hamare saath. Hello.
4: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
4: मेरा नाम एम जी है
1: जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे।
4: तो मैं गुजरात से बोल रहा हूँ
1: जी, बोलिए।
4: आज का मैच सुन के बहुत अच्छा लगा, श्रीलंका ने बहुत अच्छी फाइट की और पाकिस्तान ने भी अच्छी फाइट की। श्रीलंका के मिडल ऑर्डर तो बहुत अच्छे चले, तो हमारे मिडल ऑर्डर को थोड़ा अच्छा करना चाहिए इसी तरह।
1: जी बिल्कुल, यही कंसर्न हमारे श्रोताओं की रहती है। हर कोई चाहता है कि उनकी टीम बेहतरीन तरीके से खेले, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, वह फिर आपको बता सकते हैं हम कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। 2342103 और 2342105 हमारा नंबर है। और मुनीश, आई जस्ट वुड लाइक यू टू ब्रिंग बैक सम एनर्जी प्लीज।
2: Well then, the question is, Vishali, आपसे जानना चाहूंगा, पूरा मैच आपने देखा, जल्दी से प्लेयर ऑफ द मैच किसको आप देना चाहोगे?
0: मैं फातिमा को तो नहीं दे सकती अभी क्योंकि वो जीते नहीं है, बट स्टिल मैं कहूंगी कि ये जा सकता है कि इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन
2: एक्चुअली।
5: Captain, coincidentally, she is the player of the match as well. She'll collect the awards from Mr. Shubhan Ahmed, and after that, she'll join me for a chat. Fatima Sana Khan scored 47 of 36 deliveries, 4 fours, 2 sixers, and with the ball, 3.4 overs, picked up 4 wickets, gave away 36 runs. Brilliant all-round performance. Did not deserve to be in the losing side, but unfortunately, one of those days. Most of the things went well, but the last bit, Sri Lankan mid-order took the game away.
6: आई थिंक द वे हर्षिदा एंड कविशा प्लेड गेट्स वी नो दे आर गुड इन द सिंगर्स एंड वी नो दे टुक अस द मैच फ्रॉम देयर सो प्रेयर गोज टू देम
5: एट द हाफ वे मार्क स्कोरिंग 130 डू यू स्टिल बिलीव इन दिस यू नो दैट